FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:58 और 15 सेकंड हुए हैं। हम अपनी आज की ये सभा

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:00 को ही श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6 राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब हमारा प्रसारण हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। सबसे पहले आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, वन की अग्नि चंदन के वृक्ष को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का अहित करते समय अच्छे या बुरे व्यक्ति में अंतर नहीं करते। तात्पर्य ये कि हमें दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे अवसर मिलने पर सिर्फ हानि ही पहुंचा सकते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आपने वंदनवार कार्यक्रम सुना हमारे मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, इस समय 6:30 हुए हैं। आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण बता दें। अब से कुछ ही देर में श्रोताओं 6:35 पर हमारे मुंबई केंद्र से ही हम रिले करेंगे आपके लिए श्री रामचरित मानस गान। फिर वहीं से सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज इसकी 15वीं कड़ी होगी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने। पुराने हिट गीत आप सुन सकते हैं। प्रातः 7 कार्यक्रम होगा भूले बिसले गीत। मुंबई केंद्र से ही प्रातः 7:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे श्रोताओं प्रातः 8:00, प्रातः 10:00 और दोपहर 12:00 भी। प्रातः 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। त्रिवेणी कार्यक्रम आप दोपहर 2:00 भी सुन सकते हैं। कुछ नए फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप चित्रलोक कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर। हमारे केंद्र से आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार प्रातः 9:30 पर। प्रातः 10:05 पर आज होगा फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सफर सुरीला सा। श्रोताओं, आज सुबह 11:00 FM लाइफलाइन कार्यक्रम होगा। आज का विषय है रक्त विकार में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इस विषय पर डॉक्टर अलका खड़वाल के साथ की गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। फिर प्रातः 11:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुने हैं मित्रांदे।

दोपहर 1:05 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार होंगे जो आप शाम 6:10 पर भी सुनेंगे। प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे, पहली दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर होगा। त्रिवेणी कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:00। दोपहर 2:15 पर, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर और फिर रात 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे। सतबार नगमे आप सुना करते हैं श्रोताओं दोपहर 2:30 पर, फिर उसके बाद 3:00 कार्यक्रम सखी सहेली, शाम 4:00 मुंबई केंद्र से ही रिले किया जाएगा कार्यक्रम पिटारा। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं सेलुलाइट के सितारे सिलसिले के तहत अभिनेता कमलजीत के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो से शाम 5:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 6:30 पर आज सुनेंगे अमृत पानी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 7:00। हमारे यहाँ से प्रादेशिक मुख्य समाचार भी आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। कुछ पंजाबी गीत भी सुनवाएंगे आपको शाम 7:47 पर। श्रोता, पंजाबी गीतों का हमारा कार्यक्रम होता है सुर सांझ, ये आप सुन सकते हैं रात 10:35 पर। हवा महल कार्यक्रम होगा रात 8:00 मुंबई केंद्र से। आज इसमें झलकी सुनेंगे बेडब पड़ोसी। आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर होगा। आज के फनकार हैं गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी। उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुना करते हैं रात 10:00। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी उद्घोषिका ममता सिंह। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 होने को हैं। अब मुंबई केंद्र से हम आपके लिए रिले करेंगे रामचरितमानस का, बस थोड़ी ही देर में।

अपनी राजसभा में अंगद की चेतावनी और चुनौती सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसे लगा कि ये मूर्ख वानर ये नहीं जानता कि कुंभकर्ण जैसा वीर उसका भाई और इंद्र को परास्त करने वाला योद्धा मेघनाथ उसका पुत्र है। वानरों की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लेने से राम की किस वीरता का परिचय मिलता है। समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं। अपने हाथों अपना सिर काटकर शिव के समक्ष अग्नि में होम कर देने वाला वीर अन्यत्र कौन है? रावण अपने बल और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए कहता है, मेरी भुजाओं के बल रूपी समुद्र में कितने ही देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। अब कौन ऐसा शूरवीर है जो इनकी अथाह गहराई को पार कर सके? यदि तेरा स्वामी इतना ही बलशाली है तो फिर दूत क्यों कर भेजता है? शत्रु की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते उसे लज्जा का अनुभव नहीं होता? इन भुजाओं को देख, जिनसे अपना सिर काटकर मैंने होम कर दिया था। अंगद बोले, सिर काटकर होम कर देना एक मायावी द्वारा रचित इंद्रजाल का कर्तव्य है।

0: श्रोताओं नमस्कार। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का।
2: नमस्ते
1: शकुंतला जी। इस अंतिम कड़ी में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो संगीत आज के दौर में गाया जाता है, जो संगीत प्रचलित है, उसमें ऐसे माहौल में शास्त्रीय संगीत का घरानेदार जो संगीत है उसका क्या भविष्य आप देखती हैं?
2: आज के आधुनिक युगों में संगीत की अनेक शैलियों का विकास होने के बावजूद भी
1: जी
2: घराना परंपरा का महत्व आज भी अक्षुण्ण और अखंड बना हुआ है। एक संगीत घराना यानी सिर्फ गायन की एक शैली नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध सांगीतिक परंपरा, सौंदर्य दृष्टि और गुरु शिष्य परंपरा का जीवन स्वरूप है
1: जी।
2: है ना? प्रत्येक घराना अपनी विशिष्ट गायकी, स्वर विन्यास, राग विस्तार तथा सौंदर्य बोध के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये अलग पहचान रखते हुए एक कलाकार विभिन्न घरानों का अध्ययन और श्रवण अवश्य कर सकता है, वहां कोई रोकता नहीं है, जिससे उसका संगीत दृष्टिकोण व्यापक होता है, मान लिया। किंतु किसी एक घराने की परंपरा, एक ही घराने की परंपरा में विविध और विधिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसकी गायकी में विशिष्टता, शास्त्रीयता और एक स्वतंत्र सांगीतिक व्यक्तित्व विकसित होता है और यही घराने की वास्तविक देन है, ऐसा नहीं लगता आपको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज आवश्यकता है इस बात की कि घराना परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर नई पीढ़ी तक पहुंचाना
1: जी।

0: ये हमारा काम है। इससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम परंपरा में फिर एक बार जा रहे हैं तथा विश्व भर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक सुदृढ़ होगी ही होगी, क्योंकि आज किराना घराना विश्व भर फैला हुआ है
1: जी।
0: इसका कारण क्या है? एक घराने में जो गायक पैदा हुए ये प्रथम प्रतिभावान थे
1: जी,
0: लेकिन उसके साथ भी हर एक पीढ़ी में एक एक गायक कलाकार ऐसे बन गए कि

0: एक घराने की परंपरा और साधना अगर आप करते हैं तो उसकी गायकी में एक विशिष्ट शैली, अनुशासन और अलग पहचान विकसित होती है, और यही घराना परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसे मुझे लगता है। जयंत जी, हमारे किराना घराने के महान आचार्य और कलाकारों ने अपनी साधना तथा संगीत के माध्यम से इस परंपरा को विश्व भर प्रतिष्ठित किया है
1: जी।
0: आज हमारा भी दायित्व है कि हम इस अमूल्य सांगीतिक विरासत का सम्मान करें, उसका संरक्षण करें, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचाए, ताकि भारतीय शास्त्रीय संगीत की ये गौरवशाली परंपरा आने वाले समय में इसी प्रकार सुरों की मधुरता के साथ निरंतर प्रवाहित होती रहे
1: जी।
0: इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज के इस श्रृंखला का हम विराम
1: समापन करेंगे
0: और
1: जैसे संगीत की बैठकों में अंतिम राग गाया जाता है वो भैरवी होता है तो क्या हम
0: अच्छा,
1: भैरवी की कोई बंदी सुनेंगे?
0: बहुत ही फेमस ठुमरी दादरा जो समझो,
1: हाँ।
0: बेगम अख्तर, बाद में शोभा गुरुटू, बहुत सारे ठुमरी गायकों ने गाई है
1: जी।
0: और छोटी सी गायिका मैं भी हूँ, मुझे भी लगाए गाकर लोगों तक पहुँचाए।
1: क्या बात,
0: हमारी अटरिया
1: स्वागत है।
0: चढ़ जाओ, अजरे तमरे मध्यम।

0: शकुंतला जी, इसी के साथ हमारी श्रृंखला का आज यहाँ समापन हो रहा है और विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और संगीत सरिता के सभी सुनने वालों की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही आपको तबला संगत कर रहे थे रोहिदास परब जी, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे ऋषित होनावरकर जी, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 15वीं और आखिरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला।

भरने इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vbsmumbai पर जरूर हमें बताएं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गणपति बप्पा।
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं शमशाद बेगम और मुकेश की। फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अंदाज फिल्म से ये गाना, मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं चंद्रलेखा फिल्म का गाना। इसे गाया है उमा देवी और मोती ने, भरत व्यास ने लिखा इसे और संगीत से संवारा एस राजेश्वर राव ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी

0: उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसे गीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शमशाद बेगम, मुकेश और साथियों की आवाजों में मेला फिल्म से शकील बदायनी है, गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म के गाने के साथ राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओ, हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म से हजरत जयपुरी हैं। गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में महल फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में एक फूल दो माली फिल्म का गाना। प्रेम धवन है गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
4: अब आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ, आगे दीजिए नमस्कार।
5: आप सुन रही थी कार्यक्रम हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं, FM 107.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अब हम आपके लिए श्रोताओं आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
2: 2 दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती

0: और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी

0: गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नवभारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों

0: द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 8:15 हुए हैं। विविध भारती की मुंबई केंद्र से अब हम रिले करेंगे आपके लिए कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

0: दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार ना हों या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: बद

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय। चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बना, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा साजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेंट खाए।
0: मौका मिले तो भगवान भेंट खाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर में

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल यह है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और

रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहां से वहां जाना मुश्किल हो सकता है, ऐसे में टेक्नोलॉजी का

0: ये थी आज की त्रिवेणी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल का प्रोग्राम लाया है जोड़े भला का, जोड़े पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 मीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदें, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है।
4: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड

0: रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर, फोन 8950632224।
1: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन होंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तैनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: गणपति बप्पा
3: पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अग्निपथ फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया अजय ने। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार, संगीतकार हैं अजय अत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रेखा भारद्वाज की आवाज में डेर इश्किया फिल्म का गाना। इस गाने में नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5 और 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल
3: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक लीजिए सुनिए नीलेश मिश्रा का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया गाना आवाज है कार्तिक के फिल्म का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई

दोस्तों, आज है दूरदर्शन दिवस, यानी आज के ही दिन 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की प्रायोगिक सेवा का शुभारंभ दिल्ली में हुआ था। दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ शिक्षा, सूचना और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाई गई, शैक्षिक कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया और स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर जन जागरूकता उत्पन्न की गई। स्पष्टतः राष्ट्र निर्माण में दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी को दूरदर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं निकिता गांधी की आवाज़ में बागी 3 फिल्म का ये गाना।

समता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, और ये मानवतावादी सिद्धांत ही तो हमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्य भी सम्मिलित हैं। आज का दिन पूरे विश्व के लोकतंत्रों के लिए और विशेषकर प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए लोकतंत्र की इस बात को आगे बढ़ाते हुए और चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गाना, राघव सच्चर ने गाया इसे, फिर है फिल्म का नाम, आदित्य धर ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है राघव सच्चर ने। गाने के बोल हैं, लव इज ऑल आई गॉट।

दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो आप जानते ही होंगे। हमारा लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुने श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना। प्रसून जोशी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के महान अभियंता और राष्ट्र निर्माता भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी ने अपने अभियंत्रण कौशल, दूरदृष्टि और अनुशासन से आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभियंता दिवस उनके योगदान को स्मरण करने के साथ साथ देश के सभी अभियंताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रेम रतन धन पायो, इसका शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं पलक मुछाल और साथियों की आवाज़ों में।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन

0: ये गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अंबिका।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना था बेशरम फिल्म का गाना अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणवीर कपूर की आवाज़ों में। अब आपको सुनवा रहे हैं एक पारंपरिक रचना जिसे गाया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने, संगीतबद्ध भी किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने ही। फिल्म का नाम है जुग जुग जियो।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पद्मावत फिल्म से आवाज़ें श्रेया घोषाल और सुरूख खान की, एम तुराज के बोल और संजय लीला भंसाली की है तर्ज़।

0: इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
5: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
6: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
5: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
6: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
7: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा

0: ਮੁਫਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ HIV ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहते हैं। अखबारों से ली गई जानकारी आपसे साझी करते हैं, साथ में कुछ म्यूजिकल ट्रैक्स भी प्रोग्राम में प्ले करते हैं। और आज सबसे पहले बात करते हैं गणेशोत्सव के बारे में। पूरे देश में, विदेशों में गणेश चतुर्थी पर घरों और पंडालों में विधि विधान से विराजे गए गजानन। जी, कल देश भर में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। गणेश चतुर्थी पर देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने शुभ मुहूर्त में घरों और सार्वजनिक पंडालों में ढोल नगाड़ों के साथ विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की। इससे जुड़ी आज की अखबारों में तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें हैं, साथ में खबरें हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की हैं, मुंबई की हैं खबरें, और चेन्नई के कोलाथुर की हैं, हैदराबाद की भी हैं। इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मुंबई की बात करें। मुंबई में लाल बागचा राजा के पूजा पंडाल के साथ ही सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा के दर्शनों की श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। लोगों ने घंटों कतार में लगकर गजानन के दर्शन किए। देश के सबसे महंगे किंग्स सर्कल स्थित GSB सेवा मंडल के गजानन की खासी चर्चा हो रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में वार्षिक मेले की शुरुआत हुई, जहां पहले दिन लाखों लोगों ने गणेश जी के दर्शन किए। इसी तरह से बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई के कोलाथुर में 12,000 सफेद शंखों से तैयार 40 फीट ऊंचे अनूठे गजानन की स्थापना की गई। गोल्डन गणेश जी की बात करें तो हैदराबाद के बेगम बाजार में स्थापित गणेश प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ी है। इसे बनाने में 3.8 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही मुंबई के किंग्स सर्कल स्थित GSB सेवा मंडल के गजानन मुंबई के सबसे अमीर बप्पा हैं। इस साल बप्पा को 67 किलो सोने और 335 किलो चांदी के आभूषणों से सजाया गया है, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए 703.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बीमा करवाया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु और सेवादार पहुंच रहे हैं। तो ये है गणपति पूजा को लेकर, गणेश उत्सव को लेकर खबर। और सबसे बड़ी खबर है कि गणेश चतुर्थी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना और आरती की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह आने की कामना की है।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी दे दें। आप सबको मालूम है जेम्स ऑफ इंडिया अपने ज़िले की कहानी अपनी ज़बानी। अगर आप उभरते डिजिटल क्रिएटर्स हैं तो अपने ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को आप क्रिएटिव तरीके से, डिजिटल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका आपको मौका दिया जा रहा है, ये अभियान है। और इस अभियान में जो पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। आपको करना क्या है, करना आपको केवल इतना है कि प्ले स्टोर में जाइए, माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, लॉगिन करें, मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें, 1 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, और उसे सबमिट कर दें। और ख़ास बात ये है कि इसकी जो आखिरी तारीख है प्रविष्टियां भेजने की, एंट्रीज भेजने की, वो 30 सितंबर 2026 है। तो अपने शहर, गांव या ज़िले की किसी ख़ास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा। 30 सितंबर 2026 आखिरी तिथि है।
3: आज फिर लेट हो गए?
4: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
3: क्यों बैठे थे बाहर?
4: क्यों ना?

0: बैठूं, बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
0: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस की। वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। भारत चीन में भरोसा और बढ़ा, चीन बोला भारत ने आश्वस्त किया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल हमारे विरोध में नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी में भी। सुप्रीम कोर्ट ने जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। 15 से 30 मिनट की अवधि वाले हिंदी ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। उपभोक्ता कानून की बात करें तो उपभोक्ता कानून के दायरे में ही रहेंगे डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1955 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। दिवाली छठ के लिए चलेंगी 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के कई व्यस्त रूटों पर चलाई जाएंगी। और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी खबर है। डिजिटल पेमेंट गजट नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने। 2000 तक UPI पेमेंट पर बैंक कोई शुल्क नहीं लगा सकते। और बाढ़ प्रभावित नेपाल को प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करेगा भारत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा की मौत के मामले में 6 साल बाद CBI जांच शुरू। FIR में उद्धव, आदित्य ठाकरे और अभिनेताओं, अफसरों के नाम शामिल। CTET 12 और 13 दिसंबर को होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तिथि घोषित की है 12 से 13 दिसंबर।

अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में आज से बदलेंगे स्टूडेंट्स वीजा के नियम। अब F1 और J1 छात्रों को अमेरिका में प्रवेश के समय ही रहने की आखिरी तारीख मिलेगी। ये आमतौर पर कोर्स की अवधि या अधिकतम 4 साल जो कम होगी। नए सिस्टम में F1 छात्रों का ग्रेस पीरियड 60 दिन से घटकर 30 दिन होगा, यानी पढ़ाई या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अमेरिका छोड़ने को कम समय मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही हूतियों ने 2 और द्वीपों पर जमाया अपना कब्जा। तेल की राह में दोहरा संकट। सऊदी अरब के खमीस मुशैत सैन्य अड्डे पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हूती लड़ाके जिबूती तक पहुंच गए, जो अमेरिकी सैन्य अड्डे से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन ने कहा है कि एआई की विकास गति घटाने के लिए कोई एआई के खिलाफ डर ना फैलाया जाए।

और अब एक नज़र कारोबार क्षेत्र से जुड़ी हेडलाइंस और खेल हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्र। कारोबार क्षेत्र से जुड़ी हेडलाइंस में 2033 तक 4.2

2,00,000 करोड़ तक पहुंचेगा भारत का स्पेस सेक्टर। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतिगत सुधार, बढ़ता निजी निवेश और किफायती सेवाओं की वैश्विक मांग से देश भरेगा ऊंची उड़ान। रोमांचक मोड़ पर सफर, अगली वृद्धि से पैदा होंगे नए व्यावसायिक अवसर। बेहतर तालमेल से मजबूत होगी स्थिति। खुदरा महंगाई दर अब तक के उच्चतम स्तर 4.82% पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की रफ्तार धीमी करने की अपील से सहमा बाजार, एआई में भूचाल, सॉफ्ट बैंक ने 8 अरब गंवाए।

0: और खेल हेडलाइंस में एशियाड के चार दिन शेष 1994 से 2010 तक 16 साल 5 एशियाड और भारत की उड़ान। 65 पदक जीते गुवांगझू एशियाड में भारत ने, 59 साल में सबसे ज्यादा पदक थे भारत के। ज़वेरेव बने यूएस ओपन के सरताज, घरेलू खिलाड़ी बने शेल्टन को हराकर जीता सत्र का दूसरा ग्रैंड स्लैम। बाईस साल बाद स्विट्जरलैंड में सजेगी विश्व शतरंज की बिसात, विश्व चैंपियन गुकेश को सिंधारोव की चुनौती, हर गेम जीतने पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने दी एशिया कप विवाद पर सफाई और कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाले से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब यहां एक छोटा सा अंतराल।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: और आइए अब यहां एक म्यूजिकल ट्रैक आपको सुनवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: स्वागत है दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में फिर से आप सभी का। और अब रीजनल हेडलाइंस पर एक नज़र, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। पंजाब की बात करें तो पंजाब आएंगी 6 देशों की टीमें। जालंधर में होगा भारत पाकिस्तान का हॉकी मैच। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे मैच। जालंधर में लीग, मोहाली में सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। भारत पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीन की टीमें लेंगी भाग। ओमान और बांग्लादेश रिजर्व में पहली बार पंजाब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पाकिस्तान से 80% नशे की आपूर्ति खत्म। पंजाब में जीएसटी उल्लंघन के शक में 170 वाहन जब्त किए गए। 5 करोड़ रुपए का सामान पकड़ा गया। अब हरियाणा की बात करते हैं। 25,000 शिक्षकों को पास करना होगा HTT, नहीं तो जाएगी नौकरी। हरियाणा में भाजपा करेगी डिजिटल जनसंपर्क, नमो सेवा पोर्टल लॉन्च। 12 कार्यक्रमों की पूरी जानकारी एक मंच पर। पसंद के कार्यक्रम में भागीदारी चुन सकेंगे। गुरुग्राम में युवती को टक्कर मारकर कार सवार हुआ था फरार। बाइक पर लगे कैमरे से हुई आरोपी की पहचान। हिंदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कविता पाठ प्रतियोगिता में बोले विशेषज्ञ, शब्दों को आत्मसात करने से समृद्ध हो रही हिंदी। और अब चलते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल में कर्मियों की मांगों पर आश्वासन। हिमुडा में युक्तिकरण की समीक्षा जल्द, ये कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और हिमाचल में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किए गए। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इस सेगमेंट में होती हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। अब स्थानीय हेडलाइंस पर नजर दौड़ाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम

0: हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: और अब चलते हैं लोकल हेडलाइंस की तरफ। वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। चंडीगढ़ से शारजाह डायरेक्ट फ्लाइट 26 अक्टूबर से, सप्ताह में 4 दिन, किराया 17,000 के करीब। भारत टैक्सी ओवरचार्जिंग। 4 कैब कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद सांसद मनीष तिवारी ने भारत टैक्सी के किराए को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सामान्य किराए से दोगुने से ज्यादा वसूली पैसेंजर से ली गई है। चंडीगढ़ में आज 2 प्रमुख मार्गों पर रहेगा यातायात डायवर्जन। पुलिस के अनुसार सेक्टर 15-16 लाइट पॉइंट से GMSH 16 चौक तक यातायात डायवर्ट या नियंत्रित रहेगा। सेक्टर 16 चौक से मध्य मार्ग होते हुए PGI चौक तक भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। और पंचकूला से जुड़ी खबर है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कल फोरम पंचकूला की ओर से उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों की सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी। और अब एक गाना सुन लेते हैं।

0: तो साथियों, ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम आज के लिए। कल फिर इस प्रोग्राम में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि

0: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व से आपसी सद्भाव और सौहार्द और मजबूत होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: गणपति बप्पा
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: 2867 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: और दोस्तों 10:05 हो चुके हैं, बल्कि 10:06 हुए हैं। अब बारी है जिस प्रोग्राम की, उसका नाम है सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। तो इस सफर पर निकलते हैं, हमारे साथ रहिए 11 बजे तक। शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं अरिजीत सिंह की गाई हुई एक रचना से। ये फिल्म है कलंक। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सफ़र सुरीला सा। इस प्रोग्राम के बाद दिन में 11 बजे FM लाइफलाइन प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर अलका खडवाल। और 11:30 पर लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुन रहे मित्रा दे आपके लिए हम पेश करेंगे। सफर सुरीला सा प्रोग्राम जारी है। अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की। ये गाना है नीरज श्रीधर का लिखा हुआ, संगीत से संवारा और खुद का ही गाया हुआ।

तो अभी आपने नीरज श्रीधर को सुना। सफर सुरीला सा प्रोग्राम में अब यहां

0: छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
4: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
5: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
6: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
5: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
6: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
5: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
6: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
5: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
6: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से प्रोग्राम सफर सुरीला सामी। इसमें कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रचनाएं शामिल की जाती हैं। अब बारी है फिल्मी गाने की। सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाया बिट्टू बॉस, ये फिल्म है

अभी आपने बिट्टू बॉस फिल्म से ये गीत सुना। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में ये गाना था। अब नॉन फिल्मी गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੱਪਾ।
1: ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट एसयू 845 एनएसी मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: सफर सुरीला सा प्रोग्राम में अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीत है, लता मंगेशकर के स्वर में है, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है और ये फिल्म है बरसात की एक रात।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में अभी आपने बरसात की एक रात इस फिल्म से ये गीत सुना, और अब बारी है नॉन फिल्मी गाने की।

0: तो ये नॉन फिल्मी गाना अभी आपने सुना आदित्य रेखड़ी की आवाज में, और अब बारी है फिल्मी गाने की, लेकिन उससे पहले छोटा सा अंतराल।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: सफर सुरीला सा प्रोग्राम में अब सुनिए किशोर कुमार का गाया बेमिसाल फिल्म का गाना, आनंद बख्शी ने लिखा, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
2: सफर सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी है गैर फिल्मी गजल की। फनकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह।

अभी आपने भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल सुनी, और अब बारी है फिल्मी गाने की। सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह की आवाज़ों में ये गाना है, हेलीकॉप्टर इला ये फिल्म है। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार अमित त्रिवेदी।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और दोस्तों, सफ़र सुरीला सा प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुँचे हैं। यहाँ एक भक्ति रचना है, गणेश एंथम, शंकर महादेवन और मंजरी अय्यर की आवाज़ों में।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम FM लाइफलाइन आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
4: FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन।
0: नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका खड़वाल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्लिनिकल हीमेटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। डॉक्टर अलका, आज हमें एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जानकारी देने के लिए जुड़ी हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताएंगी, यानी अस्थि मज्जा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है, किन परिस्थितियों में होता है, किस तरह से होता है, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी देंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर अलका खड़वाल, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद, मैं आकाशवाणी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दे सकूँ।
0: ये तो डॉक्टर साहब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी OPD से सीधे इस प्रोग्राम में आ रही हैं। जो आपकी कमिटमेंट है हमारे श्रोताओं के साथ, आप उसे पूरा कर रही हैं, इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं।
5: धन्यवाद।

0: बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, विस्तार से जानना चाहेंगे कि बोन मैरो ये क्या होता है और शरीर में कहाँ होता है, इसका काम क्या है।
1: बहुत बढ़िया सवाल। तो ये जो बोन मैरो है, जैसे बोन आप समझ रहे हैं, बोन मतलब हड्डी,
0: हड्डी।
1: तो हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, स्पॉन्जी सा सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो इस बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं, एक तरीके के खून बनाने वाले बीज की तरह आप मान सकते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये एक स्टेम सेल से हमारे खून में जो तीन तरीके के कण पाए जाते हैं, जैसे लाल सेल, जिससे लाल दिखते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो हमारे खून बहता है तो खून को रोकने की काम आते हैं,
0: वो ताकत रखते हैं।
1: हाँ, वो जहीं कहीं पे खून बहना शुरू होता है तो ये जाकर के सारे प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके गुच्छा बना के वो सील कर देते हैं, हाँ, ब्लीडिंग रोक देते हैं। एक होते हैं वाइट सेल्स, जो हमारे लिए, जिसको आप सोल्जर कह सकते हैं, वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के सेल्स जो हैं, ये बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये उससे बनते हैं। तो हमारे शरीर में रोज़ पुराने सेल्स टूट फूट रहे होते हैं, पुराने लाल सेल्स, पुराने वाइट सेल्स, पुराने प्लेटलेट्स, और उनको रिन्यू करने के लिए करोड़ों की तादाद में ये सेल्स बनते रहते हैं। जो पुराने होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। तो बोन मैरो में स्टेम सेल्स का यही काम है। जैसे कि लाल खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो लाल खून ज़्यादा बनाने लग जाते हैं ये स्टेम सेल्स।
0: अच्छा।
1: कहीं प्लेटलेट की कमी हो रही होती है तो प्लेटलेट, शरीर की ज़रूरत के मुताबिक ये स्टेम सेल्स अपने को ढाल लेते हैं, वो ही वाले सेल्स बनाने लगते हैं।
0: यानी दिन रात लगातार ये काम
1: लगातार ये हमारे
0: बिना रुके।
1: हाँ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं ये हमारा ब्लड बनाने की फैक्ट्री है हमारे शरीर की। जी,
0: ब्लड बनाने की
1: फैक्ट्री है बोन मैरो।
0: और फैक्ट्री का मतलब है प्रोडक्शन हाउस है।
1: यस,
0: लगातार 24 घंटे ये काम करता है,
1: 24 घंटे काम करता रहता है, जिससे हमारे शरीर में खून बराबर बना रहे और हम सब स्वस्थ रहें।
0: यानी आपने बताया रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स।
1: हाँ, रेड सेल्स का काम होता है हमारा शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना। हम फेफड़ों से ऑक्सीजन तो लेते हैं, पर ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोने कोने में, दिमाग में, हर टिश्यू में, लिवर में, लंग में, सिर्फ लाल खून के जरिए ही पहुंच पाता है। तो लाल खून जो है, रेड सेल्स जो हैं, लाल जिससे खून लाल दिखता है, वो रेड सेल्स ये ऑक्सीजन लंग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर ये ब्लड में घूमते रहते हैं और शरीर के कोने कोने में जाके ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिससे शरीर की मशीनरी लगातार काम करती रहे।
0: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो है शरीर का अंग है। हाँ, बोन मैरो। आपने बताया कि ब्लड फैक्ट्री है ये, और नो डाउट जिस तरह से आपने इसका काम बताया, वाकई कुदरत के कमाल है। बहुत सारी बीमारियों की हम बात करते हैं, जैसे थैलेसीमिया की बात होती है, ल्यूकीमिया की बात होती है, और जो बीमारियां खून से रिलेटेड होती हैं, कहीं कहीं ये सुनने को मिलता है कि उसे बोन मैरो टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है।
1: तीन तरीके के उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। एक है ब्लड कैंसर्स, और ब्लड कैंसर्स जैसे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमास, पर इनमें हर एक को नहीं ज़रूरत पड़ती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, क्योंकि इनको पहले हम कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। जो लोग कीमोथेरेपी से ट्रीट हो जाते हैं उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर कुछ हाई रिस्क कैंसर होते हैं जैसे ट्रीटमेंट देने के बाद फिर एकदम से वापस आ गया।
0: अच्छा, वो रुकता नहीं है।
1: हाँ, हाँ, वापस, या ठीक ही नहीं हुआ, या वो वापस आ गया, ठीक होके थोड़े दिनों बाद जल्दी वापस आ गया, ऐसी सूरत में फिर वहाँ पे हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम पेशेंट से बात करते हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा है जहाँ पे बोन मैरो ने काम करना, ये तो कैंसर वाला ग्रुप हो गया जिसमें हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा ग्रुप होता है जिसमें हमारा बोन मैरो ही काम करना बंद कर दे, लाइक आपकी फैक्ट्री ही ठप हो जाए।
0: अच्छा, वो प्रोडक्शन ही बंद हो गई।
1: तो वो सिचुएशन कहलाती है, दो कंडीशंस होती हैं, इसको हम बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स कहते हैं। उसमें है, एक है एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, और दूसरा है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो एप्लास्टिक एनीमिया में ये स्टेम सेल्स ही काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो फिर ना तो उसमें लाल खून बन पाता है जो हमको ऑक्सीजन पहुंचाने के काम आता है, ना उसमें वाइट सेल्स बन पाते हैं जो हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं, ना उसमें प्लेटलेट बन पाते हैं, तो फिर ब्लीडिंग जब होती है तो वो रुकती नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और एक है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जिसमें सेल्स बन रहे हैं पर वो ठीक तरीके से ही नहीं बन रहे, एबनॉर्मल तरीके के सेल्स बना रहे हैं वो स्टेम सेल,
0: मतलब प्रॉपर काम
1: नहीं कर पाएंगे वो।
0: जी,
1: तीसरे हैं जो पैदाइशी कुछ बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे उसमें थैलेसीमिया आ जाता है, सिकल सेल, ये अनुवांशिक बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर जो
0: हम कैरी कर रहे होते हैं।
1: तो इनमें क्या होता है कि खून जो बनाने वाले सेल्स हैं, रेड खून बनाने वाले सेल्स ठीक तरीके से खून नहीं बना पाते, जो रेड सेल्स बन रहे हैं वो टूट फूट जाते हैं।

0: यह थैलेसीमिया में और सिकल सेल एनीमिया में भी, जहां पे जो रेड सेल उनमें व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट की कमी नहीं है, स्टेम सेल्स
1: लेकिन
0: जो लाल वाले सेल्स बन रहे हैं
1: वो टूट जाते हैं,
0: वो एबनॉर्मल तरीके से बन
1: वो
0: रहे
1: एक कड़ी में नहीं रहते।
0: हाँ, वो नॉर्मल तरीके से नहीं बन रहे क्योंकि उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हैं उन रेड सेल्स में, तो जो भी वो स्टेम सेल्स बना रहे हैं वो टूट फूट जा रहे हैं। तो उस सूरत में, और एक होती है इम्यूनोडेफिशिएंसीज, ये जो व्हाइट सेल्स हैं ना ये इम्यून वाले सेल्स हैं, इम्यूनिटी वाले,
1: इम्यूनिटी,
0: हाँ, तो वो इम्यून वाले सेल्स भी नहीं बन पा रहे होते, तो उनके लाल खून बन रहा है ठीक से, प्लेटलेट बन रहे हैं लेकिन इम्यून सेल्स नहीं बन रहे हैं, ये पैदाइशी बीमारियों की बात करें, हाँ, तो उधर भी हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती
1: जो
0: है
1: जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
0: ये जो दो तरीके के मैंने बताई हैं बीमारियां, इनमें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होना ही, अगर वो टाइमली हो जाए, डिटेक्ट जिस टाइम पे होना चाहिए तब उसका फायदा होता है। कैंसर वाले में तो तब है अगर वो कैंसर की दवाइयों का असर चला गया, बीमारी वापस आ गई, तभी हम उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट,
1: वो बाद की बात है,
0: हाँ,
1: वो देखने के बाद पता चलता है।
0: हाँ, वो कैंसर।
1: अच्छा डॉक्टर अलका, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक जो सामान्य व्यक्ति है,
0: हाँ जी,
1: ये किस तरह से मालूम करे,
0: ये तीन तरीके सेल जिनके मैंने आपको तीन फंक्शंस बताए, लाल खून, रेड सेल्स की कमी हो रही है तो उसको थकान महसूस होने लग जाएगी, खून कम होएगा तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी शरीर से।
1: आपने ये बताया ना कि बोन मैरो अगर काम ना करे,
0: हाँ, अब
1: उस स्थिति में ना खून बनेगा,
0: यस, हाँ,
1: ना प्रॉपर उसका काम होगा, तो शरीर में आपके समस्या आन पड़ेगी।
0: हाँ, तो उस...
1: मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपके पास पीजीआई पहुंच गया, वहां तो आपने टेस्ट किए और ये सब कुछ पता लगा लिया, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गया
0: जी।
1: एक सामान्य व्यक्ति जो है वो किस तरह से मालूम करे कि उसके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचना चाहिए, दिखाना चाहिए?
0: बिल्कुल, तो अगर आपका लाल खून नहीं बनेगा तो आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपका रंग फीका पड़ने लगेगा।
1: अच्छा, थकान महसूस,
0: हाँ,
1: होगी,
0: जो आप
1: रंग पीला पड़ेगा, हाँ, जी,
0: फीका पड़ने लग जाता है। आप जो काम पहले बड़े आराम से कर लेते हैं, धीरे धीरे थकान महसूस होने लगती है, सांस फूलने लग जाती है आपकी, क्योंकि अब आपके शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है, रेड सेल्स तो है नहीं ऑक्सीजन पहुंचाने
1: तो
0: के लिए,
1: नहीं मिल रही,
0: हाँ, थकान महसूस होने लगती है। फिर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो फिर वो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है शरीर में, नील निशान पड़ने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, आपकी उल्टी वगैरह हो रही है तो उसमें कई बार खून के कण आ सकते हैं, आपके पेशाब में भी खून आ सकता है, आपके पखाने में भी खून आ सकता है, क्योंकि वो प्लेटलेट जो चाहिए होते हैं वो है नहीं, जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है जो वो सील कर सकें, ब्लीडिंग रोक सकें, प्लेटलेट तो है नहीं, तो फिर जहाँ से
1: काम ही नहीं,
0: हाँ,
1: कर
0: काम नहीं कर रहा है तो ब्लीडिंग हो रही है तो वो नहीं रुकती है, नीले निशान चकत्ते पड़ने लगते हैं। फिर वाइट सेल्स नहीं है आपके पास जो इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो एक के बाद एक छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कोई जना एक ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट कराते हैं जो कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, तो उसमें दिखता है कि हीमोग्लोबिन कम है, वाइट सेल की मात्रा कम है, प्लेटलेट कम है, फिर वहाँ ये सिचुएशन बता देती है कि बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है,
1: नहीं
0: तो
1: कर रहा
0: है। ये चाहे एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो, और कई बार वो माइलोडिस्प्लासिस सिंड्रोम या ब्लड कैंसर की भी शुरुआत कई बार ऐसे ही होती है कि इसी तरीके से खून कम हो रहा है किसी का, किसी के प्लेटलेट कम हो रहे हैं, किसी की तीनों चीज़ें कम हो रही हैं, तो फिर उसके बाद फिर बोन मैरो का टेस्ट करके देखा जाता है कि ये क्यों नहीं खून बन रहा है इनके ठीक से, फिर पता चलता है कि ये कैंसर की वजह से नहीं खून बन रहा है, या ये एप्लास्टिक एनीमिया की बोन मैरो की फैक्ट्री ही बंद हो गई है, या एबनॉर्मल तरीके के सेल्स बन रहे हैं जो नॉर्मल खून बनाने वाले सेल्स की जगह घेर ली उन्होंने, तो नॉर्मल सेल्स अब नहीं बन रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर, ये तो आपने हमें बताया कि एक सामान्य सा खून टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपके खून की स्थिति क्या है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, वो हेल्दी है या नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
0: बिल्कुल,
1: ये तो एक सामान्य लैब में जाके टेस्ट हो जाएगा,
0: हाँ जी।
1: तो उसके बाद अगर ऐसे किसी व्यक्ति को थकान महसूस होती है बिना किसी कारण, काम करने में दिक्कत हो रही है, तो जब वो पीजीआई आता है,
0: हाँ जी,
1: आप कौन कौन से टेस्ट उसके लिए तैयार रखते हैं, और कब ये मालूम चलता है कि नहीं ये कोई आम समस्या नहीं है, इसकी जड़ वहाँ है,
0: बहुत अच्छा,
1: कैसे पता लगाते हैं?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, वही इसी को मैं दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। पेशेंट ने अपना बाहर से ब्लड का टेस्ट कराया क्योंकि उसको कुछ थकान या बुखार ऐसा लग रहा था, टेस्ट कराया, उसमें ऐसी रिपोर्ट आई, तो फिर वो रिपोर्ट लेकर के पीजीआई आ गए, तो हम पहले अपने फिर से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम बोन मैरो का टेस्ट करते हैं।
1: अच्छा, वहाँ आप फिर बोन मैरो का टेस्ट करते,
0: हाँ,
1: हैं।
0: क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल नहीं है बोन मैरो टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट के बाद उसको रीड करने वाले पैथोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ही देख करके फिर वो रिपोर्ट पूरी बनाते
1: ये
0: हैं।
1: असल में ये टेस्ट होता क्या है मैम?
0: हाँ, ये तो जो हमारा, अब मैंने आपको बताया था कि हमारी हड्डियों में बोन मैरो होता है, तो पूरे शरीर में होता है, जब बच्चा जब पैदा

0: क्या होता है ना, शरीर का हर एक हड्डी में खून अच्छे से बन रहा होता है. जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हमारे कुछ हिस्सों में खून नहीं बन रहा होता है, पर कुछ पर्टिकुलर बोन्स हैं जहाँ बहुत अच्छे से खून बन रहा होता है, वही हमारा काम चला रहता है. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हमारी हिप बोन्स,
1: जी,
0: स्पाइन की बोन्स, ठीक है ना. और हमारे ये बोन्स जो है, हाथ की बोन्स हैं, ये कंधे की बोन्स हैं, बड़ी बड़ी बोन्स हैं, उसके अंदर खून बनाने वाले सेल्स एडल्ट में वहाँ बन रहे होते हैं. तो हम डायरेक्टली ये हिप बोन से एक सुई से सुन करके,
1: अच्छा,
0: हाँ, वहाँ से सुई डाल करके थोड़ा सा 1 या 2 ml, 5 ml के आसपास वो बोन मैरो निकालते हैं. वो ब्लड की तरह ही होता है वो,
1: अच्छा,
0: हाँ. फिर उसके उसका टेस्ट जो है, वो स्लाइड्स वगैरह बना करके बायोप्सी बनाई जाती है, छोटा सा टुकड़ा भी निकाला जाता है बोन का. फिर वो सारा टेस्ट हमारे हीमाटोलॉजी लैब में वो लोग फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके, उसमें और स्पेशल टेस्ट करके फिर पता चलता है कि अच्छा, ये तो बोन मैरो ही नहीं काम कर रहा है, या बोन मैरो तो ठीक है लेकिन इसके अंदर कुछ खराब सेल्स हैं जो नॉर्मल वाले सेल्स से अलग दिख रहे हैं, और वो नॉर्मल सेल्स को काम नहीं करने दे रहा, इसीलिए खून वगैरह नहीं बन रहा. फिर वो कैंसर के सेल्स हैं या किसी और टाइप के सेल्स हैं, उसकी रिपोर्ट जब आ जाती है फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं.
1: जी, वो ट्रीटमेंट के बारे में हम डॉक्टर का बाद में बात करेंगे.
0: Sure.
1: लेकिन एक हमारे श्रोता ऑनलाइन है, इनकी बात सुनते हैं पहले.
0: बिल्कुल.
1: एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी. नाम बताइए, जगह का नाम बताइए.
2: जी, मैं अम्बाला कैंट से राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ.
1: अम्बाला कैंट से राजेंद्र कुमार
2: जी.
1: राजेंद्र कुमार जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट.
2: हाँ जी, हाँ
1: जी, अस्थि मज्जा.
0: जी,
1: इसके बारे में बात हम कर रहे हैं.
2: जी जनाब.
1: इससे जुड़ा आपका सवाल है तो डॉक्टर अलका हमारे साथ हैं. अपना सवाल कीजिए.
0: हाँ जी, नमस्कार राजेंद्र जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं.
2: जी मैडम, मैं बाल से बोल रहा था.
0: हाँ जी
2: मैडम, मुझे प्रॉब्लम है प्लेटलेट्स की. प्लेटलेट्स मेरी रुकी हुई है 60,000 पे.
0: हाँ जी,
2: 60,000 रुकी हुई है. मुझे चंडीगढ़ PI जाने के लिए कहा गया है, वहाँ जाके टेस्ट करवाए, वहाँ से इलाज होगा.
0: हाँ जी,
2: तो बोन मैरो का से कोई है लिंक क्या.
0: देखिए, सिर्फ अगर आपके प्लेटलेट ही कम हैं, है ना, एक ये उम्र पे डिपेंड करता है कि किस उम्र में ये प्लेटलेट कम हो रहे हैं.
2: 55.
0: हाँ, तो ऐसा है कि प्लेटलेट अकेले कम हो रहे हैं तो हो सकता है इसके कारण ये होता है, एक तो बोन मैरो में ठीक नहीं बन रहे हो, या बोन मैरो तो आपका बहुत अच्छे से बना रहा है लेकिन आपके शरीर में एक आपका शरीर अपने ही प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है. तो बोन मैरो तो बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, वो ब्लड प्लेटलेट बना रहा है. जैसे वो आपके ब्लड के अंदर आते हैं प्लेटलेट, तो वो एंटीबॉडीज उस पर अटैक कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है ना. तो इसको हम कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब ये आपकी बॉडी अपने अगेंस्ट ही इम्यून सेल्स बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना. ये मोस्ट कॉमन कॉज है इस उम्र में, पर थोड़ी फिर भी हमें कई बार ये देखना होता है कि सिर्फ अगर ये अभी अभी शुरू हुआ है या ये पहले से चले आ रहा है, तो कई बार कम होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं. फिर तो ये मोस्ट लाइकली इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके लिए तो सिर्फ दवाइयाँ ही दी जाती हैं. पर फिर भी जब हमें लगता है कि नहीं, हम आपको एग्जामिन करेंगे, हमें और भी कुछ लक्षण मिलेंगे कि ये प्लेटलेट कम होने के, तब हम आपका बोन मैरो के लिए एडवाइस करेंगे, फिर उसको देख करके फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर निकल के आता है, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं ही पड़ती है. बिल्कुल, सिर्फ एक, क्योंकि अकेला प्लेटलेट कम हो रहा है ना, बोन मैरो तो हम आपका कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपका बोन मैरो में प्लेटलेट ठीक से बन रहे हो, लेकिन आपके शरीर में बाहर जो एंटीबॉडीज हैं वो तोड़ फोड़ रही, तो इसी के लिए बोन मैरो करने के लिए बोला गया है. तो हम वो हमारे यहाँ पे PGI में हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान हो जाएगा.
2: कौन सा दिन है मैडम?
0: हाँ, मुझे हीमेटोलॉजी की हम लोगों की नई न्यू OPD में हम लोग सोमवार मंगलवार, सोमवार को सवेरे से शाम तक बैठते हैं और बृहस्पतिवार को भी हम सवेरे से शाम तक बैठते हैं. हफ्ते में 3 दिन हीमेटोलॉजी की OPD होती है, आप वहाँ आ सकते.
2: मंगल और रविवार.
0: जी
1: जी, सोम मंगल और बृहस्पतिवार को.
0: जी
1: जी, आप वहाँ आइए और प्रॉपर अपना इलाज करवाएं, तो आपके सभी सवालों का जवाब जो है वो मिल जाएगा. तो थैंक यू फॉर कॉलिंग. तो डॉक्टर, ये तो थे हमारे श्रोता जो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि प्लेटलेट्स मेरे कम हो रहे हैं, उसके लिए बोन मैरो
0: टेस्ट
1: करवाने के लिए बोला है,
0: कारण देखने के लिए कि ये प्लेटलेट क्यों कम हो रहे हैं.
1: हाँ, तो इसका संबंध सीधा होता है प्लेटलेट्स कम होने का.
0: हाँ, तो वही मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये तीनों चीजें कई बार इकट्ठे नहीं खत्म होती हैं, तो इसलिए बोन मैरो करके देखना पड़ता है. कई बार दिखता सिर्फ वो प्लेटलेट कम हुए हैं, लेकिन हम मरीज को भी

0: देखेंगे ना, सिर्फ एक ब्लड की रिपोर्ट नहीं देखते हैं हम उसको पूरा देखेंगे कि उसकी गांठें तो नहीं है साथ में, उसका तिल्ली और जिगर तो नहीं बढ़ा हुआ है जो अलग तरीके की बीमारी की तरफ संकेत देता है। अगर उसके अंदर प्लेटलेट अच्छे से बन रहे हैं तो इसमें बोन मैरो में खराबी नहीं है, इसका मतलब
1: कहीं और है।
0: हाँ, वो जो है वो है, उसके शरीर ने एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी है, लेकिन वो सेल्स जैसे बाहर आते हैं, जैसे आप दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, वो जैसे प्लेटलेट बाहर निकले उसने पकड़ के प्लेटलेट को खत्म कर दिया। बोन मैरो फॉल्ट पे नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज हैं जो ब्लड में घूम रही हैं, जो प्लेटलेट के बाहर आते ही बोन मैरो से उनको तोड़फोड़ दे रही है, इसलिए प्लेटलेट कम हो रहा है।
1: जी, अब टेस्ट होने के बाद ये आपको मालूम चल गया कि बोन मैरो काम नहीं कर रही, प्रॉपरली नहीं कर रही,
0: बिल्कुल,
1: तो उसका फिर ट्रीटमेंट कैसे होता है? उसकी शुरुआत कैसे होती है?
0: हाँ बिल्कुल, अगर उस बोन मैरो की रिपोर्ट में हमारे पास आई कि ये तो कैंसर है इसके अंदर, ठीक है ना
1: जी,
0: अब वो कैंसर अक्यूट ल्यूकीमिया हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, ठीक है ना, सो उसमें जो है कौन सा वाला कैंसर, उसमें स्पेशल टेस्ट वो बोन मैरो उसी में सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है, तो पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला ल्यूकीमिया, क्योंकि अलग अलग टाइप के ब्लड कैंसर्स का अलग अलग इलाज है, तो ये एक ही तरीके का इलाज नहीं होता है, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि हाँ ब्लड कैंसर है लेकिन ये कौन सा वाला ब्लड कैंसर है, ठीक है ना, तो अगर ये अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है, मल्टीपल माइलोमा है, उसके लिए कीमोथेरेपी देते हैं, और फिर उसके बाद हम जब ट्रीटमेंट देके बीच बीच में बोन मैरो टेस्ट करके देखते हैं कि कैंसर गायब हो रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर उनका पूरा कोर्स करवाते हैं हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद जब कोर्स पूरा हो जाता है वो ट्रीटमेंट बंद हो जाता है स्पेशली ल्यूकीमिया के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो ट्रीट होके वो दोबारा वापस आ गया, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट करके हम मरीज को फॉलोअप के लिए रेगुलरली बुलाते रहते हैं, क्योंकि इन कैंसर्स की फितरत होती है वापस आने की, किसी की जल्दी वापस आ जाती है, किसी की सालों तक कंट्रोल में रहती है और फिर वापस आ सकती है, हर एक में नहीं आती है। अगर आप आज की तारीख में 100 मरीजों का, सपोज मैं अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की बात करूं, ठीक है, उनका इलाज 3 साल का होता है, उसमें मैं एक से एग्जांपल देती हूं, उसी से बाकी बीमारियों का भी पता चल जाएगा आपको, जैसे अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया उसका 3 साल का ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिनका भी हम ट्रीटमेंट 100 लोगों का अगर हमने ट्रीटमेंट चालू किया
1: जी,
0: तो 3 साल बाद 40 से 50 लोग ऐसे होंगे जिनका जड़ से चला जाएगा ये कैंसर।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, और 50 लोग ऐसे होंगे, 50 है जो इलाज 3 साल का लंबा है इलाज है, इस दौरान कभी भी वापस आ सकता है, ठीक है, और या इलाज पूरा होने के बाद भी हम 5 साल तक मरीज को चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं, उस टाइम भी कभी भी बीमारी वापस आ सकती है, तो इसलिए चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं। अगर बीमारी वापस आती है और जल्दी वापस आती है तो इसका मतलब है कि कीमोथेरेपी अब इन पे ज़्यादा काम नहीं करेगी, ऐसी सूरत में हम उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन समझाते हैं।
1: मतलब ये काफ़ी देर के बाद डिसाइड होता है?
0: नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कीमोथेरेपी दी तो 1 महीने बाद फिर से बोन मैरो करके देखते हैं, मान लीजिए उनके बोन मैरो में 90% कैंसर था, ठीक है, तो 1 महीने की कीमोथेरेपी देने के बाद फिर से बोन मैरो किया जाता है, तो वो अगर 5% से कम हो गया इसका मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं, फिर 2-3 महीने बाद फिर से दोबारा बोन मैरो करके देखते हैं कि जो कंट्रोल में आया था वो कंट्रोल चल रहा है, तो आगे का ट्रीटमेंट पूरा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में भी यही है कि 1 महीने का 1.5 महीने का इलाज देके फिर से बोन मैरो करके देखते हैं, जो उनके माइलोइड ल्यूकीमिया वाले कैंसर सेल्स थे वो खत्म हो गए, 5% से कम हो गए, आगे का ट्रीटमेंट दिया, फिर पूरा उनका कोर्स करा करके बंद हो जाता है ट्रीटमेंट, फिर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है, जब हमने बोन मैरो का टेस्ट किया था उस टाइम पे स्पेशल टेस्ट जो किए जाते हैं उसमें ये देखने वाले टेस्ट भी होते हैं कि इस पेशेंट का ठीक होने का रिस्क और या वापस जल्दी आने का कितना रिस्क है, तो कई बार वो पहले ही हमें रिपोर्ट्स पता चल जाती हैं, तो हम पेशेंट को पहले ही बस समझाते हैं कि आपकी बहुत हाई रिस्क बीमारी है जिसका कीमोथेरेपी के दौरान पूरी तरीके से ठीक होने की संभावना कम है या जल्दी वापस आने की संभावना है, तो जैसे ही आपकी 1-1.5 महीने में बीमारी कंट्रोल में आती है आपके लिए बेस्ट होगा कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें
1: जी,
0: तो ये ऐसी सिचुएशन है, तो हर एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है, तो वो बोन मैरो टेस्ट के दौरान काफ़ी चीज़ें हमको वो नॉलेज मिल जाती है कि इस पेशेंट के कीमोथेरेपी में भी ज़्यादा रिस्पांस नहीं आएगा या कीमोथेरेपी के बाद भी बीच में ही बीमारी वापस आ जाएगी, तो वो पहले से ही प्रिपेयर कर देते
1: हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटमेंट के दौरान आप स्टेप बाय स्टेप ये पता करते हैं
0: बिल्कुल
1: कि स्थिति कैसी है और कहाँ तक पहुँची है,
0: बिल्कुल,
1: अगर वो वापिस आ रही है तो उसके लिए फिर अलग से इलाज है,
0: बिल्कुल,
1: और अगर वो नहीं आई है
0: तो फिर कंप्लीट हो जाता है ट्रीटमेंट, पेशेंट को चेकअप के लिए रेगुलरली बुलाते रहते हैं, अब फिर कभी बीमारी वापस आई फिर हमें मालूम है कि अब हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ही लेना पड़ेगा।
1: मतलब ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है या नहीं है ये 1 या 2 दिन में पता नहीं चलता।

0: सकता है
1: जी नहीं।
0: इसके लिए आपको लगातार फॉलो अप करना पड़ता है।
1: हाँ, ये लेकिन ये कैंसर से रिलेटेड है ये चीज।
0: हाँ।
1: लेकिन दूसरा ग्रुप बताया था जिनको ट्रांसप्लांट
0: के लिए बताइए क्या वहाँ क्या होता है,
1: जैसे थैलेसीमिया हुआ, ए प्लास्टिक एनीमिया हुआ, अगर ये यंग एज है, थैलेसीमिया के लिए मैं एग्जांपल दूं क्योंकि उसके लिए ये वन ऑफ द क्योरेटिव ट्रीटमेंट है आज की डेट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो पहली बात तो ये कि थैलेसीमिया की बीमारी एक साल में पता चल जाती है, तो उसी टाइम जब पता चल जाए कि ये थैलेसीमिया है उसी टाइम से तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए कि इस पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेटली क्योर करेगा, वरना तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ
0: वहाँ
1: क्लियर है। फिर ए प्लास्टिक एनीमिया है, जैसे बच्चा ठीक चल रहा था, ठीक है, या कोई बड़ा जो यंग पेशेंट 30-40 साल की उम्र तक भी ठीक चल रहे थे, फिर सडनली उनको चेक किया गया, खून की कमी होने लगी, इन्फेक्शन होने लगे, ब्लीडिंग होने लगी, बोन मैरो टेस्ट किया तो उसमें आ गया एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मैरो की फैक्ट्री ठप हो गई, काम नहीं कर रही है। तो ऐसी सूरत में हम उनको कहते हैं कि स्ट्रेट अवे ट्रांसप्लांट के लिए बात करते हैं कि आपके केस में ट्रांसप्लांट फायदेमंद होगा, ठीक है ना। सुपर ट्रांसप्लांट किससे किया जाए उस वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बोलना ये कि इसका ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है तो ये एकदम इजीली नहीं हो जाता,
0: इतना इजी नहीं
1: है, इजी नहीं है।
0: इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है।
1: हाँ, क्योंकि पता है कि ये वाली बीमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही ठीक हो पाएगी।
0: अच्छा, तो ये आपने बताया कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हर सिचुएशन को जानकर समझकर आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं, तो काम आपका भी कोई आसान नहीं है मैडम, काफी मेहनत का काम है आपका।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, मान लीजिए अब ये स्थिति आ गई है कि ट्रांसप्लांट होना है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वहां शुरुआत कैसे होती है?
1: हाँ।
0: उसके लिए आप क्या करते हैं और मरीज को, मरीज के परिवार वालों को, कोई आसान काम तो नहीं है समझाने के लिए? मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ट्रांसप्लांट का मतलब लोग ये समझते हैं कि कोई ऑपरेशन होगा, इस मामले में भी वो यही समझते हैं, वो घबराना शुरू कर देते हैं।
1: नहीं, ये आपने बहुत ही उचित सवाल पूछा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट सब समझते हैं सर्जरी, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ,
0: अभी ऑपरेशन टेबल पर,
1: ऑपरेशन टेबल पे ले जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट किया, लिवर ट्रांसप्लांट किया, लंग ट्रांसप्लांट किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया, वहाँ पे डेफिनेटली वो सर्जरी का सर्जिकल ट्रांस प्रोसीजर है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ एक जगह से लेकर के दूसरी जगह डालना,
0: स्थानांतरित करना।
1: हाँ, स्थानांतरित करना। सो यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये किया जाता है कि स्टेम सेल्स एक जगह से लेकर के दूसरी जगह डाले जाते हैं, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है।
0: सवाल यहाँ ये आता है, ये स्टेम सेल्स आप फिर कहाँ से लेते हैं?
1: बिल्कुल। तो स्टेम सेल्स हमारे पास 2-3 जगह से लिए जा सकते हैं। एक तो है डायरेक्टली हम बोन मैरो से ही लें, जैसे जहाँ से हमने बोन मैरो का टेस्ट करते हैं उसी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली जहाँ बन रहा है, प्रोडक्शन जहाँ हो रही है, हम डायरेक्टली वहाँ से लें।
0: वहाँ से तो आप ले सकते हैं।
1: हाँ, वो ले सकते हैं। वहाँ पे हमें थोड़ा सा बेहोशी में या सुन करके उस एरिया को, वहाँ से नीडल डाल करके बोन मैरो कलेक्ट कर लिया जाता है, आधे एक घंटे में उतना जितना मरीज के लिए चाहिए वो कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो स्टेम सेल्स डायरेक्टली बोन मैरो से लिए जा सकते हैं, नीडल्स से कलेक्ट किए जा सकते हैं जहाँ बोन मैरो बन रहा है। दूसरा तरीका होता है कि इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो यही स्टेम सेल्स बोन मैरो से।
0: इंजेक्शंस
1: हैं? हाँ।
0: अच्छा।
1: 4-5 दिन हम इंजेक्शंस देते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स को बढ़ा देते हैं मात्रा, और फिर वो बोन मैरो से निकल करके ब्लड में आ जाते हैं, और फिर हम वो डायरेक्टली ब्लड से ही कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है, उसमें भी स्टेम सेल्स होते हैं, पर उसका चलन आजकल कम हो गया हुआ है। आजकल मेन जो है ब्लड में से स्टेम सेल्स कलेक्ट करके वो ट्रांसप्लांट के लिए यूज किए जाते हैं।
0: जी, चलिए, ये स्टेम सेल्स आपने ले लिए।
1: हाँ जी।
0: अब उसके बाद?
1: हाँ, सो अब 2 तरीके के ट्रांसप्लांट है, एक है मरीज के अपने ही स्टेम सेल्स उसी को देना, ये जो है मल्टीपल माइलोमा के ट्रांसप्लांट में किया जाता है और लिम्फोमा के ट्रांसप्लांट में, क्योंकि इनके में इनके जो स्टेम सेल्स कलेक्ट करके पहले फ्रीज कर लिए जाते हैं और उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है, तो सारे स्टेम सेल्स बोन मैरो में जितने भी स्टेम सेल्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं पुरानी वाले, और ये वाले स्टेम सेल उनको नए दिए जाते हैं। एक होते हैं एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो पहले वाला जो बताया पेशेंट का अपना ही स्टेम सेल्स उन्हीं को दिए जाते हैं, उसको हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट कहते हैं। ऑटो मतलब अपने ही, ऑटोलोगस हमारे ही स्टेम सेल्स हम ही को दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी दे के वापस हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, कैंसर, क्योंकि उनका बोन मैरो से ही वो बीमारी आ रही, तो वो तो खराब बोन मैरो, हम वही स्टेम सेल्स लेकर के देके कोई फायदा नहीं है, तो हम फिर टिश्यू मैच करके जो उस मरीज से मैच होता है वो डोनर से यही प्रक्रिया से स्टेम सेल्स उनसे लेकर के मरीज में दिए जाते हैं।
0: तो इस केस में डोनर्स कौन होते हैं?
1: हाँ, सबसे अच्छा तो होता है कि भाई बहन परिवार में से ही मैच मिले, लेकिन

0: सारे 100% चांस नहीं होते मिलने के, 100 में से 25 से 30% चांस होते हैं कि भाई बहन मैच मिल जाएं, या 10% चांस होते हैं कि मम्मी पापा मैच मिल जाएं, ठीक है। और नहीं होता है तो अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे इनकी HLA टाइपिंग टिश्यू मैचिंग है, वो रिपोर्ट्स भेजी जाती है, उनसे कोई मैच डोनर वहाँ होता है तो उनके स्टेम सेल्स मंगवाए जाते हैं। तो मरीज ट्रांसप्लांट सेंटर में हम एडमिट कर लेते हैं उसकी फिटनेस देख करके, फिर उसके बाद उसको कीमोथेरेपी देते हैं कि उसका बोन मैरो खाली हो जाए, उसके खराब सेल्स सारे खत्म हो जाए, तो आने वाले जो नए सेल्स हैं वो उनको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की तरह ही चढ़ाए जाते हैं, और ये सारे स्टेम सेल्स जा अपनी जगह बोन मैरो में ढूंढ लेते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, फिर 2-3-4 हफ्तों में ये फिर से पनपना शुरू कर देते हैं, फिर से नॉर्मल तरीके के सेल्स बनाना शुरू
1: होने शुरू हो,
0: फिर ग्रोथ होने लग जाती है।
1: और जब ये होता होगा आपको कितना अच्छा लगता होगा।
0: बिल्कुल, सबका इंतजार हमें भी होता है, मरीज को
1: भी
0: होता है,
1: ये खबर सुनने का बहुत इंतजार रहता होगा कि कोई आके ये कहे कि जी अब मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ।
0: हाँ, इनफैक्ट हम लोग जब ट्रांसप्लांट करते हैं फिर डेली हम ब्लड सेल काउंट कर रहे होते हैं, धीरे धीरे हमें 2-3 हफ्ते में दिखने लगता है कि अब इनके जो स्टेम सेल्स दिए थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो हम लोगों की भी सांस में सांस आती है, मरीज भी खुश हो जाता है। जब वो अप्रोप्रिएट अमाउंट हो जाता है कि पेशेंट घर जाने लायक हो सकता है, कि वाइट सेल्स उतने हो गए कि वो इन्फेक्शन से बचा रह सकता है, हीमोग्लोबिन इतना हो गया कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट इतने हो गए कि उसको प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, तब हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। पर चार्ज के बाद वही कहानी नहीं खत्म होती है, इसके बाद भी क्योंकि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जो भी स्टेम सेल्स हमने डाले थे दूसरे के डाले थे, वो जब उनके शरीर में बैठ के बनाते हैं उस टाइम तक तो बना दो चीज़ें होंगी, या तो जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया है उसी का शरीर ही उसको पहचान नहीं, तो बाहर से कुछ चीज़ आई है उसको वो डैमेज कर देते, तो ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। दूसरी चीज़ है अपना लिए वो सेल्स, और वो सेल्स बनने लगे और ब्लड में आने लगे, फिर वो सेल्स पूरे शरीर में घूमते हैं, फिर वो पहचानते कि ये तो हमारा शरीर नहीं है, फिर वो फाइट करते हैं जिसके अंदर अच्छा। हम डालेंगे उसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कहते हैं। ये बहुत एक टफ चीज़ है, ये 40-50% पेशेंट्स में होती है, हल्की फुल्की तो कैंसर्स को कंट्रोल करने में काम आ जाती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, क्योंकि वो सेल्स कैंसर सेल पनप रहा होता है तो उसको उसी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि डोनर के वो जो सेल्स आए हैं, पर कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, कभी लीवर पे असर डाल सकते हैं, आंतों पे असर डाल सकते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें और ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो कहानी वहीं नहीं खत्म होती है, 1-2 साल तक हमें मरीज को चेकअप के लिए बुलाते रहना होता है।
1: ये काफी लंबा सफर है।
0: बिल्कुल,
1: है ना
0: जी।
1: और इस सफर को आप सभी लोग बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, तो वाकई आपको सलाम करने का दिल करता है। आप सभी के लिए हम दुआएं करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें। आज इस प्रोग्राम के जरिए आप श्रोताओं से क्या अपेक्षा रखती हैं?
0: मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि पहली बात तो किसी को ये बीमारी ना हो, कोई भी बीमारी ना हो,
1: जिसमें
0: बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। कई मरीज और मरीज की फैमिली थोड़ा सोच में पड़ जाती है,
1: टूट भी जाते हैं, बिल्कुल उनको संभालना होता है।
0: हाँ, बहुत संभालना होता है, तकलीफें आती हैं, पर तकलीफों से निकल के भी आते हैं मरीज, और फिर नॉर्मल तरीके की लाइफ 1-2 साल में वो बिताने लायक हो जाती है। पर लेकिन एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आपको रेगुलरली चेकअप के लिए आना होता है, और बहुत जल्दी जल्दी बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है।
1: तो डॉक्टर अलका खडवाल, आप हमारे प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, यहाँ पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने, प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने आसपास की सेहत का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम FM लाइफलाइन, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रा दे।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000

0: ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਮੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨੇ 11:30 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
1: ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਮਾਲ ਜੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ।
0: ਅਭੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਪਰ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। 12 ਵਜਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਆਈਏ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸੇ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2,000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहक

0: को पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: गणपति बप्पा
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले और अनवर की आवाजों में निदा फाजली के बोलते खयाम का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अधूरा आदमी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

0: नमकीन फिल्म का गाना आप
1: सुनिए। गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
3: आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
4: सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन।
3: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा
5: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं। बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो तुम गाना ही गाओ।
3: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
4: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल FM 107.2 MHz पर। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
2: गणपति बप्पा।
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलों वधाइयां।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 1:05 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम रहेगा सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा दोपहर 2:00। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम सेलुलॉइड के सितारे, अभिनेता कंवलजीत से सविता बजाज की बातचीत।

शाम 5:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप श्रवण करेंगे अमृत वाणी।

शाम 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर, फिर सुर सांझ कार्यक्रम में रात 10:32।

रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी पर केंद्रित रहेगा।

0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अभी थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और 1:10 पर पंजाबी में हमारे जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपए द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के लेन देन या भुगतान पर शुल्क नहीं लगा सकते। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कोई भी बैंक या अदायगी प्रणाली प्रदाता इन माध्यमों से लेन देन करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। इसमें विशेष रूप से रुपए द्वारा संचालित डेबिट कार्ड और यूपीआई से 2,000 रुपए तक के लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं से यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। भविष्य में लागू होने वाले कोई भी व्यापारी छूट दर एमडीआर निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के चुनिंदा लेन देन तक ही सीमित रहेगी। ये शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू एमडीआर से काफी कम होंगे। ये स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन पर चल रही बहस के बीच आया है, जिसमें यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर शुल्क लगाए जाने की संभावना को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा तथा विधायक विनोद भयाना ने कल शाम हांसी रेलवे स्टेशन पर 4 रेलगाड़ियों के अल्प ठहराव का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बताया कि इन रेलगाड़ियों के ठहराव से क्षेत्र में रेल संपर्क मजबूत हुआ है।
2: फिरोजपुर से अगरतला त्रिपुरा और बीकानेर से हरिद्वार का ठहरा हुआ है, इससे निश्चित रूप से यहाँ हांसी और अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा। जिसको नॉर्थ ईस्ट में जाना हो या हरिद्वार जाना हो, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा हुई है। थी अभी जिस तरीके से गोरखधाम की बात आज आई है, अधिकारियों को कहा है कि उसकी भी यहाँ रुकने की व्यवस्था की जाए।
1: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और रेल यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हुई है। विधायक विनोद भयाना ने कहा कि लोगों द्वारा हांसी में इन रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने रेलवे मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगरतला, गुवाहाटी और प्रयागराज जैसी जगहों के लिए हांसी से ट्रेन की सुविधा मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कल फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की और चार प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें यूएवी और एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक वाहन तकनीक केंद्र व विजुअल डिजाइन और एनिमेशन स्टूडियो शामिल है। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के कुल 3,877 विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने विवेकाधीन कोष से 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल ने कहा है कि जिले के प्रत्येक निजी कोचिंग संस्थान को हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण एवं विनियमन नियम 2026 के दायरे में लाया जाएगा। आज इस उपलक्ष्य में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे सभी निजी कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। नियमों के तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। संस्थानों को अपना विवरण पुस्तिका जारी करनी होगी, जिसमें ट्यूशन फीस, फीस वापसी की नीति, बैच की समय सीमा और क्षमता पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कल पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के 25 साल तक राजनीतिक सलाहकार रहे उनके चचेरे भाई मेजर भूपेंद्र सिंह बादल और उनके बेटे अमरवीर सिंह बादल, नगर परिषद सन्नौर के प्रधान एवं आप नेता प्रदीप जोशन के अलावा कई नेताओं को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुणो। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI या रूपे द्वारा संचालित डेबिट कार्डा राही किए गए 2000 रुपये तक के लैन देन या भुगतानों पर चार्ज नहीं लगा सकते। एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन अनुसार कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली मुहैया करने इन तरीकों राही लैन देन करने वाले व्यक्तियों से सीधे या सीधे चार्ज नहीं लगा सकता। वित्त मंत्रालय ने UPI लैन देन के चार्जा संबंधी नियमों को स्पष्ट करने लिए भुगतान ते सैटलमेंट सिस्टम एक्ट तहत इन्हां बदलावों नोटिफाई किया है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन अज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1969 ऑल इंडिया रेडियो के अधीन टैलीविजन सेवा की अजमायश करने के तौर पर की गई सी। पिछले कुछ सालों दौरान लोगों तक जानकारी पहुँचा सभ्याचार मजबूत कर अते देश की एकता लिए यह अहम मंच बन गया है। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवावां जिमें सैटेलाइट ते डायरैक्ट टू होम सेवा के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला जरिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन ही गैंगस्टर नशा तस्कर ते सूबे की शांति भंग करने की कोशिश करने वाले अंसरां सख्त सुनेहा दिता है। उन्होंने कहा है कि पंजाब अमन कानून पूरी तरह कायम है ते अपराधियों लिए कोई सुरक्षित लुकणगा नहीं है। मोलडोवा गणराज तो भगौड़े अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम की हवालगी हासिल करने लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF दे SP बिक्रमजीत सिंह बराड़ की अगवाई वाली पंजाब पुलिस टीम को बधाई देंदे मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार पंजाब की शांति सुरक्षा लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि सरकार वालों 1234 गैंगस्टर मॉड्यूलों का पर्दाफाश किया गया है और विदेशों तो 10 भगौड़ियों रिपोर्ट किया गया है, जबकि नशा तस्करों खिलाफ़ 60582 FIR दर्ज की गई ने 366 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टर लिए हुण कोई सुरक्षित थान नहीं बची। उन्होंने कहा कि अमृत दालम की हवालगी संगठित अपराध विरुद्ध पंजाब की निरंतर मुहिम एक वड्डी प्राप्ति है अते सूबा सरकार की गैंगस्टर ते वार मुहिम की सफलता का परतख प्रमाण है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सूबा सरकार ने गैंगस्टर फरौती मंगण वाले नशा तस्कर संगठित अपराधिक नैटवर्कों विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस विंग ने 16 मार्च 2022 तो 11 सितंबर 2026 तक के 4 सालों तो वध समय दौरान की गई कार्रवाई दौरान 92 दहशतगर्दी मॉड्यूलों का पर्दाफाश करके 686 दहशतगर्दा गिरफ्तार किया है। इस दे नाल ही इस विंग ने इस समय दौरान 53 दहशतगर्दी मॉड्यूलों समय तो पहला ख़त्म करके

0: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
1: फिल्म संगीत में लीजिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म डियर जिंदगी का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं फिल्म आपकी है कौन का ये गीत। शब्द रचना है देव कोहली की, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और आवाजें हैं SP बाल सुब्रमण्यम की।

0: फिल्म आपके हैं कौन के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5 और 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
4: अरोड़ा प्लाईवुड
5: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR, प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU845, NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।

आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया, सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा। और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफ़र और विविध भारती सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है

0: और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियाँ चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है 7 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते, मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है, तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मन मीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं ज़रा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। जब हम कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफ़र साथ हो तो सिर्फ सफ़र रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफ़र बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, और हमारे पास ये गाना है। तो ज़रा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का।

0: ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
1: ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ
2: ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
1: ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ
3: ਬੱਪਾ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਮੁਸਕੁਰਾਏ। ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋ ਆਪਣਾਪਨ ਤੇ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ।
0: सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारे कविता जीने के अनेक ढंग हैं, जीवन के अनगिनत रंग हैं, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन मीत चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो। हम सफ़र के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है। जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफ़र आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है। कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है। जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफ़र मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए ज़रा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज़। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है वाह वाह वाह ज़बरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा वाह क्या गीत है, तेरी एक नज़र की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी ज़िंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है नूतन बुआ जी शेखर जी मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं वाह वाह और आप सभी की पसंद का हो तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हमसफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है। तो देखिए आपने भी चुना था क्या ये गाना, ज़रा फिल्म का नाम बताइए और आवाज़ें किसकी है बूझिए ज़रा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजाएंगे जो आप चाहेंगे सुनना।

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज़, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में, ये वाला गाना। लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं। तो ज़रा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफ़र का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आ पाएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं। हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और ज़रा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है, बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए अभी बोल आ ही जाएगा।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मुक्ति, मुकेश की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी, हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा वाह वाह ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफ़र, सुरीली प्रस्तुति, तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियाँ, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं और तब सामने आना चाहिए युवा पीढ़ी को। हमें अपने परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। मुमकिन है कि हमारे आसपास के बुजुर्ग टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार ना हों या फिर उसे अपनाने से डरते या सकुचाते हों। हमें आगे बढ़कर उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए। आदमी भी कैसा काजी है हाय, मौका मिले तो भगवान भेज खाए।
0: मौका मिले तो भगवान भेज खाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का

आम धारणा ये है कि मोबाइल फोन्स अमूमन युवा पीढ़ी या आगे की पीढ़ी के काम के उपकरण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो उम्र के एक ऐसे दौर पर हैं जब उनके पास बहुत सारा खाली समय है, उनके लिए मोबाइल बहुत उपयोगी बन सकते हैं। बच्चे जब दूर देश चले गए हों, दूसरे शहरों में रह रहे हों, तो वीडियो कॉल करके उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती हैं। सवाल ये है कि हम अपने बुजुर्गों को ये सब बताएं और रोज धीरज के साथ उन्हें सिखाएं। मुमकिन है कि एक हफ्ते, दो हफ्ते या एक महीने में वो इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा उनके चेहरे की चमक क्या कहती है।

हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जहां एक तरफ युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के शिकार होते चले जा रहे हैं, अपना जरूरत से ज्यादा वक्त वो इस स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके संयमित इस्तेमाल से सबका भला हो सकता है। आज जहां किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना मुश्किल बनता जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए एक ही विषय की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर यहां से वहां जाना मुश्किल

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे। भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय

0: दोनों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
1: आर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
2: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाव बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
4: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
5: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
2: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
6: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की

0: कराती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में आधे

0: प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आकाशदीप। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका हैं सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस थोड़ी ही देर में
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक सकारात्मक अपने अंदर आते ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहाँ भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहाँ पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि

0: सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है
1: लोगों का
0: देखने
1: जो
0: से।
1: उत्साह है वो देखते ही बनता है। और
0: जी
1: कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम कितना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता हम तुरंत गणपति
0: जी
1: बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर
0: जी
1: लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ
0: जी
1: जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
0: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और
0: जी
1: एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: सुन
1: इससे
0: लेते
1: पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना आज आप क्या
0: हैं
1: विषय लेकर आई
0: कौन से
1: हैं।
0: विषय पे हमें बातें
1: हाँ
0: करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेके आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता,
1: ओहो
0: कि किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए। तो इसके बारे में भी
1: हम
0: हम बात
1: तुरंत
0: करेंगे।
1: किसी चीज को पाना चाहते हैं ना।
0: जी
1: पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत
0: बिल्कुल
1: उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हम इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना
0: जी
1: है ना, शांत रहते थे। लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
0: जी और हम
1: तो
0: सिर्फ अभी मुंह से ही जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं,
1: हाँ ये
0: तो
1: तो
0: ये
1: और
0: चीज़।
1: भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची
0: बिल्कुल, वो अपने विचार
1: है।
0: हम हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
0: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों
0: जी
1: का शौक होता है ये, आपको पता है ना
0: जी
1: कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
0: हर जगह
1: हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं और
0: बिल्कुल
1: सामने वाले का
0: जी
1: कान भी कच्चा होता है
0: बिल्कुल,
1: आरती
0: इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये चीज कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं।
1: और बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
0: बिल्कुल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
1: जैसे
0: जैसे कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
1: ओहो, ये तो
0: बिल्कुल
1: बड़ा
0: अजीब अजीब, सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, कोई हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।
1: अच्छा
0: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर, तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है।
0: जी
1: तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि
0: हाँ।
1: किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज मिला
0: जो
1: के
0: बहुत ही
1: खाते हैं,
0: अजीब हो।
1: अजीब होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे और अभी गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत,
1: बहुत
0: है ना?
1: प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा,
0: माना जाएगा।
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं, इसे शुरू हो जाती है, है ना? सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, हम इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को। हाँ? बहुत छोटा सा उदाहरण है। हाँ? आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए। एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है, और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि, तो ये भागीदारी

0: भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी
1: बिल्कुल
0: कि नहीं, ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू
1: दे
0: कर दिया।
1: दिया। हाँ
0: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए, तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
1: ये सबसे बड़ी बात है ना,
0: जी
1: कि
0: बिल्कुल।
1: हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर, लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं। लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया, यही लोकतंत्र
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना, भाई आज क्या
0: बिल्कुल
1: बनाना है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है,
0: हाँ
1: और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है ना।
0: हाँ
1: लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी।
0: हो गया फैसला।
1: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है
0: बिल्कुल
1: और असंतोष घर
0: बिल्कुल
1: में
0: प्रजा में
1: व्याप्त हो
0: असंतोष
1: जाता
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती
0: जी
1: हमें, ये अधिकारों के साथ साथ
0: जी
1: जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश के गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक बार बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष

0: रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते हैं।
0: ठान लेते हैं।
1: जी
0: मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी, और उन्होंने नागालैंड जाकर वहां के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहां का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहां जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहां स्थान चुना, और वहां जाकर वो आज भी काम कर रही
1: बहुत
0: है।
1: बहुत बड़ी बात है
0: कितनी
1: ये,
0: बड़ी बात है,
1: सही बात
0: जबकि
1: है।
0: हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की
1: हाँ,
0: शरण
1: सबका
0: में आते
1: अधिकतर यही होता
0: हैं,
1: है।
0: है ना, और हम फिल्मों
1: जी
0: की तरफ आते हैं, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहाँ कोई जाना नहीं चाहता
1: जी
0: और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उन्होंने वो स्थान चुना और वहां लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो
1: जी।
0: ऐसे ही सुमिता घोष हैं, जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: जी
0: हो।
1: बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा,
1: बिल्कुल
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके
1: जी,
0: दिमाग में आई, जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती
1: क्योंकि
0: है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम
0: हाँ
1: अपना व्यवसाय खड़ा कर लें,
0: हाँ
1: लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी बात
0: बिल्कुल,
1: है।
0: और कि वही मालिक भी बने। हम क्या
1: जी
0: सोचते हैं, काम तो हम शुरू कर दें, मालिक
1: हाँ
0: भी हम बन जाएं,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: हमारे विचार में यही रहता है ना
1: जी
0: ज्यादातर,
1: हाँ
0: कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते
1: हमें
0: हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1,000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1,000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से।
1: जी
0: और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था, बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी उन्होंने। और यही रंगसूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंगसूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंगसूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात ये थी,
1: जी
0: और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी,
1: जी
0: बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक
1: एक
0: साथ
1: साथ
0: लाने की।
1: जी
0: और रंगसूत्र से जुड़े कारीगरों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2,000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल। और यानी जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया, बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी।
1: जी
0: रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया, और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल। और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी
1: जी
0: तरफ दुनिया का बड़ा बाजार।

0: इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुनीता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर, आपके आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में।
0: हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी है जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती है, और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण तबके में रहकर भी
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है, सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो
1: जी।
0: और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री। देव

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: गणपति बप्पा।
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
1: गणपति बप्पा।
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: अब इस अंतराल के बाद एक गीत सुन लिया जाए।
4: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं
1: हाँ बिल्कुल.
0: और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं.
1: जी
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दो, एक डायरी
1: बिल्कुल.
0: मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक
1: बिल्कुल
0: संकलन के रूप में आ
1: आ
0: जाए.
1: जाएगी. और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज़, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है,
0: हाँ
1: आप थोड़े शांत हो जाते हैं.
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत ज़रूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है.
0: बहुत अच्छी बात है. लेकिन
1: जी
0: अगर आप लेखक नहीं भी हैं, तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि
1: जी
0: जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार
1: बिल्कुल
0: कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा.
1: बिल्कुल. आप
0: और
1: बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: हाँ,
1: मिटा
0: उसे
1: सकते
0: मिटा
1: हैं.
0: सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को, कि
1: बिल्कुल
0: आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन
1: जी
0: मन आपका शांत हो जाता है.
1: जी
0: तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है. और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से ये बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है.
1: जी
0: अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं. सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं. मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले
1: अरे
0: पर्याप्त किसी ने असहमति जता दी, किसी ने
1: जी
0: काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से बन बना जाते हैं और
1: बिल्कुल
0: लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है.
1: बिल्कुल. अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो लड़
0: हाँ,
1: रहे हैं. मतलब कोई भी किसी भी बात पे हम लड़ सकते
0: मतलब
1: हैं.
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं,
1: बिल्कुल
0: और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रही हैं स्थितियां, कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात
1: जी
0: कहाँ से कहाँ पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना.
1: बिल्कुल. और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है. और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं, और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए. कोई भी बात हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं. तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो
0: खराब
1: सकते
0: होते
1: हैं,
0: हैं.
1: दोस्ती टूट सकती है. तो
0: बिल्कुल
1: इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए
0: हाँ,
1: कि हम जो भी बोलें, सोच
0: सोच
1: समझ कर
0: समझ,
1: बोलें.
0: इसलिए तोल मोल की बोल कहा जाता
1: बिल्कुल.
0: है ना. और आज के जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया है आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई. एक क्लिक
1: बिल्कुल
0: में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी, कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है. एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा,
1: जी
0: सामान लाना पड़ेगा. अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है
1: बिल्कुल.
0: और सामान आपके घर पर आ जाता
1: अब
0: है.
1: 5 मिनट का, अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं. फिर हम उसको
0: हाँ,
1: फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया.
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया. सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है.
1: जी
0: तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है.
1: बिल्कुल. और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत

0: नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब,
1: हाँ क्या
0: हमने जो
1: बात हो
0: लिखा
1: गई।
0: था क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो। हमने उसका तुरंत तुरंत
0: बिल्कुल
1: अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला और
0: बिल्कुल, या हो
1: रिश्ते।
0: सकता है वो नहीं देना चाह रहा हो उस
1: हाँ
0: समय,
1: ये भी हो
0: कुछ
1: सकता है।
0: सोचना चाह रहा हो, समझना
1: हाँ
0: चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है।
0: जी
1: तो सहनशीलता की जो कमी है वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते ही हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है यही जिम्मेदार होती है।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसके विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते हैं कि
0: बिल्कुल
1: उसके विचारों का हम सम्मान करें। अगर
0: बिल्कुल
1: वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
0: बिल्कुल, सबका अपना अपना नजरिया
1: विचार
0: है।
1: हो सकता है,
0: जी
1: नजरिया हो सकता है आपके प्रति। और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें। कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
1: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं
0: जी
1: होता, आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए।
0: एक अलग पहचान बनाती है कि
1: हाँ
0: इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े हैं।
1: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी
0: बिल्कुल
1: बड़ी बात है। इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद ही चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है
0: जी,
1: ना। ये
0: लेकिन चुप
1: जो
0: बैठना सबसे बड़ी ताकत है।
1: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती
0: बिल्कुल
1: है ना आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके
0: जी
1: अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें और कम बोलें, सोच समझ कर बोलें तो विवाद भी कम होगा। और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
0: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना, सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है,
1: वो ये
0: तो
1: होता
0: थोड़ा
1: है।
0: रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर
1: बिल्कुल
0: ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत
1: मत
0: दीजिए।
1: दें और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को
0: बिल्कुल
1: भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक
0: बिल्कुल
1: श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है। ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है। सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
1: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट्स से हैं उन पर,
0: जी
1: कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
0: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण।

0: आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है। जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है। सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि जहाँ सहनशीलता है वहाँ प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल। एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम जो सोच समझ के लिखते थे, दो दो तीन तीन दिन में खत
1: पहुंचते
0: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां, जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: गणपति बप्पा
1: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना,
1: अच्छा
0: तो
1: जी
0: कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे
1: जी,
0: खाता है क्या।
1: लेकिन
0: मैं
1: सच में
0: ऐसा,
1: मजा आता है
0: मजा
1: बहुत।
0: आता है, तुमने खा के देखा है
1: बिल्कुल
0: इसका
1: बिल्कुल, मैंने खाया है।
0: मतलब। ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसी भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे जलेबी को सॉस में
0: डुबो
1: जी
0: कर। और मैंने देखा, हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम उन्हें
1: अच्छा
0: हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो
1: अच्छा
0: लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल, जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं, उन्हें खाती थी। तो ये
1: अच्छा
0: भी एक अजीब ही किस्म की आदत है, जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग, रोटी अलग, दाल को
1: हाँ
0: चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को, मैंने जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम,
1: जी
0: और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं, हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हों लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती हैं कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहाँ के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देख कर हमें भी शौक चढ़ा, पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही
0: सही
1: अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहनी ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द, या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर
1: जी
0: नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और
1: जी
0: अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है, या हमें जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो, आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी और एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सखियों कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया है, तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई इसका मतलब। और कि हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं,
1: अच्छा
0: और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स
1: सब्जियां।
0: करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
1: अच्छा
0: और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं, मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से ये।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है,
1: हाँ
0: बूंदी और जो भुजिया, जिसे हम
1: जी
0: नमकीन
1: हाँ
0: भुजिया, उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने आए वहाँ के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल
1: जी
0: के साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देख कर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी

0: पूछना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी,
0: सर्दी गर्म
1: तो
0: नहीं
1: बहुत
0: होता
1: सच में बिल्कुल अलग है।
0: हाँ, वैसे मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई ये कैसी आदतें हैं आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों
1: बिल्कुल
0: को।
1: नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो खा
0: लेकिन
1: सकते हैं।
0: हमें तो हो जाती है। अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना
1: गीत
0: नहीं
1: नहीं सुनवाया।
0: सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना मुहावरों की दुनिया।
1: क्या बात है, हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना, मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेन्द्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं इसको?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कह कही इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: सेल्युलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
2: जी
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूँगा।
1: तो इसी बात पे गाना हो जाए आपकी पसंद का?
2: ज़रूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
2: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
2: तो उस ज़माने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी शंकर हुसैन, उसमें गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी
0: और बहुत समय लगा, मुझे लगता है, पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग काफी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया, और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी
0: उसी
1: हाँ
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चला ना? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिसिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आएँ और वो आपके हाथों मारे जाएँ तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत
1: है।
0: किए।
1: जी
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: ये आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं, ये बता रही हैं, मुझे समझ नहीं आ
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी
1: रहा
0: ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई देते
1: नहीं
0: हैं।
1: नहीं

0: अच्छी कोई बात नहीं। वो असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज़्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
1: अच्छा, एनीवे
0: हाँ, तो क्या कह रही थी आप?
1: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है
0: नहीं,
1: क्या?
0: अभिनय में फ़र्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो, और है भी थोड़ा सा, वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर
1: लाउड
0: में।
1: होता
0: जी
1: है
0: हाँ, थिएटर में।
1: जी।
0: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविज़न और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, डायरेक्शनल टेक्निक्स में फ़र्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविज़न का है वो क्लोज़र मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहाँ निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
1: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
0: क्यों क्यों हम
1: कैरेक्टराइजेशन
0: लोग
1: करना
0: टेलीविज़न में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविज़न में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी
1: ज्यादा
0: दिखाते
1: होते
0: हैं।
1: हैं। यही बात तो
0: बिल्कुल।
1: उगलवाना चाह रही थी
0: गुस्सा आ गया मुझे। गुस्सा
1: अच्छा,
0: दिलवा के है।
1: जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्याल आते हैं इस बारे में?
0: देखिए, मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं। मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविज़न पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविज़न जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन हैं। आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है। इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट, आई थिंक सिनेमा इज़। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविज़न में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविज़न में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविज़न में नहीं आना चाहते, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं।
1: जो आपको पसंद हो।
0: गालिब की एक गज़ल है, मुझे बड़ी पसंद है, और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
1: अरे
0: कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं, उसी से आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का भाई, वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली
0: है ना,
1: जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर जो चीज़ है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पर ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो, समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफ़र तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहा है, कहीं ये थम गया

0: क्या होगा ये सोचकर कैसा लगता है।
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे, इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को, यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है, ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले। क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे। हमने माना दिल्ली में रहें, मगर खाएंगे क्या?
0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है, तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को, किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं नहीं क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, तो वो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
0: ताकत,
1: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं। तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ, मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए।
0: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
1: नहीं
0: पति के लिए?
1: नहीं नहीं, वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
0: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
1: सुंदर सी बीवी के लिए?
0: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए, क्यों नहीं।
1: तो चलिए, बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
0: कौन सी फिल्म का?
1: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ सहारनपुर का हूँ,
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं IAS में जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फ़ैन था, देव साहब का फ़ैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फ़ैन होते थे, और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फ़ैन होते, तो बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी उसका असर हुआ कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज़ थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी ज़िंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे NDA का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं NDA में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था, उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था, तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई, तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लवंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
1: नहीं,
0: वहां पर?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं,
1: नहीं इंस्टीट्यूट
0: अच्छा।
1: में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा है आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीज़ें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या

0: है
1: या
0: इस बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
0: ऊंची है
1: ऊंचे
0: ना?
1: होंगे, क्योंकि
0: हाँ
1: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
0: जी।
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
0: ओ
1: तो देखिए, ये एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े ही आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहाँ। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अबे तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज़ जिम में ट्राई करेगा वहाँ नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए।
0: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए,
1: हाँ
0: चप्पा चप्पा कोशिश करते
1: बिल्कुल
0: रहना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: बाकायदा
0: इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना
1: चप्पा च
0: माचिस फिल्म में,
1: माचिस माचिस में
0: हो
1: था।
0: जाए
1: नहीं बिल्कुल, हो जाए,
0: हैं चप्पा
1: जलाइए
0: चप्पा चरखा
1: जलाइए
0: चले
1: माचिस
0: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले।
1: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए
1: अब
0: गाना?
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था। मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है।

0: तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं।
1: ठीक है, तो आगे सुनते हैं। रूप सुहाना लगता है,

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन मुझे, आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: बीस
1: कर
0: पच्चीस साल हो गए आपको
1: डालूंगा।
0: लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, आप देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मज़ा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं, तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए,
0: चांस लेना
1: गोताबाना हाँ
0: अच्छा,
1: चांस लेना चाहूँगा। व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई।
1: हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप, हाँ मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ, देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी

0: सेट पे होती हैं कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में। तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ,
1: जी
0: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज़ जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा ज़रूरी है।
1: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा
0: पता
1: है
0: नहीं,
1: कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
0: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए।
1: वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियाँ आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
0: देखिए ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ।
1: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
0: मैं कोशिश कर नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज़्यादा नहीं हूँ।
1: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
0: हाँ, मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँ, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज़्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह,
0: हाँ, तो ये काम अच्छा लगता है
1: मतलब
0: जो
1: छैया छैया।
0: हाँ, छैया
1: तो आइए
0: छैया
1: फिर सुनते हैं छैया छैया,
0: बेशक
1: हैं आपको
0: बिल्कुल
1: पसंद है ना?
0: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए
0: मतलब
1: बेसिकली
0: 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते
1: वही
0: हैं,
1: तो
0: वेदर कैमरा
1: नहीं
0: इज ऑन और
1: नहीं ये मैं वही
0: नॉट।
1: कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे के
1: कैमरे के
0: सामने
1: सामने
0: जी।
1: उसमें से एक्टिंग बिल्कुल ख़त्म कर दूँ।
0: हाँ, अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी ज़िंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद ख़त्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा
0: जी,
1: मैं मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे शीशे टूट जाते
1: तो जब
0: हैं
1: वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करती होंगे किचन में, या वो आपकी ही
1: हाँ
0: मदद करती रहती हैं
1: नहीं,
0: हर
1: मैं
0: समय?
1: उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है, तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
1: हाँ जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूँ वही करता हूँ। तो अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
0: मुझे आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी,
1: हाँ
0: सत्ते पे
1: सत्ता,
0: सत्ता,
1: जी हाँ जी
0: है
1: हाँ,
0: ना?
1: तो उसका गाना प्यार हमें किस
0: हाँ
1: मोड़ पे
0: हाँ
1: ले
0: ले
1: आया।
0: आया है।
1: चलिए साहब।

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में। तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ है इस काम से, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ,
0: कुछ
1: बेकार
0: और
1: ही
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के।
1: बिल्कुल नहीं,
0: मतलब
1: एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इससे अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाए, अगर
0: है।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा, कई ऐसे भी डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहें काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं। वरना एक वो होता है, इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया
1: नहीं
0: कि मैं काम कर लूं,
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या लॉन्गिंग
1: नहीं
0: नहीं है कि मैं
1: ना
0: उसके
1: ना
0: साथ काम
1: ना ना
0: करूं,
1: ना
0: ऐसा कुछ भी नहीं है?
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: हूँ तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली के 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चलदल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उल्लेखनीय है। नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हुआ। इससे पहले इस वर्ष जून में गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ के इंदिरा एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गणपति बप्पा।
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दीआं दिलों वधाईआं।
3: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं दयावान फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

दोस्तों भी आपने सुना मुझे कुछ कहना है फिल्म का गीत प्रीति पिंकी और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ के इंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटीं। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य

0: बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
2: यस मैम।
1: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
2: Yes, pets are so lovely.
1: Right, Soham.
4: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
1: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
4: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
1: Wow, that's good. And what about you, Navya?
5: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
1: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
6: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
1: Oh, that's so exciting, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
2: Yes, ma'am.
1: Can you name some birds?
3: Sparrow.
1: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
7: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
1: Yes, peacock is a colorful bird.
8: Ma'am, parrot.
1: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
9: Any guesses?
1: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
2: Yes.
10: It will be fun.

0: Now, children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh, yes. Now, let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Mummy, green.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, it is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Mummy.
0: Navya, Vanya, Soham.
3: Me.
0: Me. Lavish.
5: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
3: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो देना।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी, हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है, बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा।
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू, उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट।

0: बुलबुल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
2: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
2: धन्यवाद।
0: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
0: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
2: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर। पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गई तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
2: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
0: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
2: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
0: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
0: यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय में?
0: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
2: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
0: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
2: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
2: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा

0: कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
1: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
0: हाँ दीदी।
1: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
2: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
0: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।

0: ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं। हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
1: दीदी ये लीजिए आसन।
0: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं। आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा? क्या कहती है माँ? आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए। वही तो मैं भी कहती हूँ। शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
2: हाँ सो तो है।
0: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं। मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
2: तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा मीम दीदी अब मैं चलूंगी। कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
2: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੋਹੂ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: जैश ए मोहम्मद के

0: गना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले से संबंधित प्रश्न पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, आम नागरिकों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं और इन परीक्षाओं में चयनित कर्मचारियों को संबंधित पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जिनकी नियुक्तियां सरकारी अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिम अरब सागर के पश्चिम मध्य अरब सागर से सटे कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
3: ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ
4: ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?

0: की हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
4: अरोड़ा प्लाईवुड,
5: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ, ਸਵਨੰਦ ਕਿਰਕਿਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन के नंबर प्लेट की पहचान करने वाले ऑटोमेटेड कैमरे लगाए जाएंगे। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से जल वितरण को लेकर आज 6 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षर किया गया। हरियाणा को 836 क्यूसेक पानी मिलेगा। और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा, सेवा संकल्प अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक जन

0: कल्याणकारी और सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर साल 15 सितंबर को महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया की राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: पीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा नंबर प्लेट की पहचान करने वाले ऑटोमेटेड ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के प्रथम चरण में प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 कैमरे लगाए जाएंगे, जिन पर लगभग 41.74 करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी। श्री विज ने बताया कि इसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। परिवहन मंत्री ने बताया कि NCR के इन प्रमुख जिलों में जीवन अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों की पहचान तथा पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ANPR कैमरे लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहनों की पहचान की प्रक्रिया के अधिक प्रभावी और व्यवस्थित होने से इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से जल वितरण को लेकर आज 6 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। करीब 15,000 करोड़ रूपये की परियोजना के पूरे होने पर हरियाणा को 836 क्यूसेक पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है।
3: आज जो ये किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं, मैं विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। उनकी पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के

0: बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है। हरियाणा के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन तीन परियोजनाओं रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध से 48% हिस्सा हरियाणा को मिलेगा, इसलिए यमुना में पानी की उपलब्धता बढ़ाने से अधिक फायदा हरियाणा को होगा।
1: आज हरियाणा के विभिन्न मंत्रियों और सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल और राष्ट्र निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हिसार में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
2: पार्टी के नाते हमने ये तय किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जिन परिवारों में कोई जन कल्याण का काम हुआ है, यानी कि सरकार की योजनाओं के लाभ मिले हैं, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में इस प्रकार के परिवारों के साथ मिल करके हमारे कार्यकर्ता आशीर्वाद का दिया जलाने का काम करेंगे। इसी दिन अलग अलग स्थानों के ऊपर रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम जिसको हमने नाम दिया है सेवा मेरा योद्धा, इसके नाते रक्तदान, स्वच्छता, पौधारोपण और सामाजिक सेवा के अन्य काम कार्यकर्ता अपने हाथ में लेंगे।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कैथल में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि 17 सितंबर से 1 माह तक पूरे प्रदेश में चलने वाले इस अभियान में जन सेवा ही प्रभु सेवा की भावना के साथ विभिन्न सामाजिक, जन कल्याणकारी और सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा के तहत स्कूलों में भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि नमो सेवा अनकही कहानियां के माध्यम से प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और विकास कार्यों को नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अंबाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सेवा संकल्प अभियान में प्रदेश सरकार और भाजपा आमजन के साथ तालमेल कर सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सेवा की कहानी कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में आकाशवाणी के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालयों में 2027-28 सत्र के लिए 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी दोनों कक्षाओं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए परीक्षा 10 अप्रैल को ली जाएगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं अमन देव तों प्रदेशिक खबरां सुणो। अज देश भर विच राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरां नूं राष्ट्र निर्माण दे कर्मयोगी दस्सिया है। पंजाब सरकार ने सेहत अते परिवार भलाई विभाग नूं राष्ट्रीय सेहत मिशन दे कर्मचारी नूं दरपेश मसलियां दे हल लई इक सांझी कमेटी दे गठन दे निर्देश दित्ते ने। सरकारी मैडिकल कॉलेज पटियाला सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पंजाब का पहला सरकारी मैडिकल कॉलेज बन गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आज कनेडा तो वापस भेजे जाने तो बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी साथी नूं हिरासत में लिया है। भारत और अफगानिस्तान विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शामी 7:30 बजे दिल्ली में खेडिया जाएगा।

0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
5: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
5: HIV
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे

सुनिए फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। सभी फौजी साथियों को प्रीति शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हमेशा की तरह देशभक्ति गीत के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म फना से। इसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने। गीत प्रसून जोशी का है, संगीत जतिन ललित का।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गाना उदित नारायण की आवाज में है। फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत। गीत समीर का है, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को, फिल्म का नाम था बदलते रिश्ते। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में इम्तिहान फिल्म का गाना। गीत फैज अनवर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल के उस पार।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: वही मोनू, तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरिया स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
4: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
6: FM लाइफलाइन प्रोग्राम के बारे में आपको एक सूचना दे दें। FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन PGI चंडीगढ़। FM लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा आर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है, किसी शंका का समाधान चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कल बाद दोपहर 3:30 से 4 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619 यानी 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
0: कार्यक्रम का अगला गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है कालिया। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत RD बर्मन का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत उत्तम सिंह का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं मोहम्मद शफी की लिखी झलकी बेढब पड़ोसी। निर्देशक हैं संतोष जोशी।

0: बेगम, ओ बेगम, मर गया बेगम
1: जी, आई।
0: अरे जरा जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तो पूरी तरह से पंचर हो गया।
1: अरे क्यों चिल्ला रहे हो, दरवाजा खोल रही हूँ। ये लीजिए, खोल गया दरवाजा।
2: हाय अल्लाह, इतना सामान, मैंने तो सिर्फ शक्कर मंगवाई थी, ये गेहूं भी क्यों लिया है?
0: ये गेहूं अपना नहीं है बेगम।
2: अरे तो किसका है?
0: ये जो अपने पड़ोसी जहमत खां हमारे है ना, उन्हीं का है। जब से आए हैं कभी उन्हें बाजार जाते नहीं देखा है, रोज किसी न किसी बहाने अपना सामान मुझसे बुलवा लेते हैं।
2: हाय अल्लाह, काला मुंह इनका। आप तो घर का सामान लाने से कतराते हैं, लेकिन वो मुआ आपसे वजन लदवा ही लेता है। तभी तो मैं सोच रही थी कि आपको खाना क्यों नहीं लग रहा है, कितनी तंदुरुस्ती गिर गई है जी आपकी।
0: वो तो ठीक है बेगम, ये लो शक्कर संभाल।

0: कर रखो, देखो कहीं एक दाना भी न गिरने पाए।
1: ये मुई शक्कर क्या हो गई? जैसे कि बड़े घर की बहू को हाथी हिफाजत से रखना पड़ता है।
0: तुम करो शक्कर साहेबा की हिफाजत और मैं चला जहमत खां के घर दे आऊं। ये जहमत मिया, ओ जहमत मिया, ओ भाईजान, भाभी।
2: अरे मुबारक मुबारक, वो आ गया।
1: अरे कौन आ गया?
2: अरे धीरे बोलो, वही अपना शागिर्द रमजान मियाँ। अब बेचारा कितना फरमाबदार है।
0: अरे भाईजान
2: आया, भाई आया आया। आओ आओ रमजान भाई, भाई मैं तुमको रोज ये कुछ ना कुछ जहमत देता रहता हूँ।
0: क्यों शर्मिंदा करते हैं भाईजान, ये तो मेरा फर्ज है। एक पड़ोसी दूसरे के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा?
2: वाह रमजान मियाँ वाह, क्या बुलंद ख्याल है। खुदा करे सभी को तुम्हारे जैसा पड़ोसी मिले।
1: हाँ भाई साहब, ये तो हर वक्त आपकी तारीफ करते रहते हैं। अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से आपकी तारीफ करते नहीं थकते।
0: अरे भाभी ये तो आप लोगों की इनायत है, बंदा तो किसी भी तारीफ के लायक नहीं है। हाँ, मेरे लायक और कोई काम तो नहीं है।
2: भाई रमजान मियाँ फिलहाल तो नहीं है, काम आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया।
0: तो जाऊं क्या?
2: आदाब
0: आदाब
2: आदाब आदाब।
0: बेगम बेगम, जरा देखना जहमत मियाँ का दरवाजा बंद है या खुला।
1: बंद है, बंद। जल्दी से निकल जाइए वरना कोई ना कोई जहमत पकड़ा देंगे।
0: ठीक है चलता हूँ।
1: जाओ जाओ।
0: आलतू जलालतू आई बला को टाल तू, आलतू जलालतू आई बला को टाल तू, आलतू जलालतू आई बला को टाल तू। अरे मर गया, फिर फंसा। मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा। हाँ
2: अरे चुप के कहाँ चल दी है रमजान मियाँ?
0: जी वो मैं घी लाने जा रहा था।
2: घी? अरे तो अपनी भाभी जान से नहीं मिलोगे।
0: जरा जल्दी में था, बात यह है कि आज हलवा खाने का इरादा हो गया था। वो कल शकर मिली है ना, बेगम ने घी का हुक्म फरमा दिया।
2: भाई वाह,
0: मैंने उनसे कहा कि आप स्टोव जलाइए, मैं अभी घी लेकर आया।
1: भाई जान एक कप चाय तो पी जाइए।
0: नहीं भाभी नहीं, फिर पी लूंगा मैं, देर हो जाएगी तो बेगम की बातें सुननी पड़ेगी।
1: अरे मैं उन्हें समझा दूंगी, आइए दो मिनट में चाय तैयार करके लाइए।
2: रमजान मियाँ इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्या बेगम से बहुत डरते हैं? मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं जी, डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, बस सिर्फ एक बात से डर लग रहा है।
2: बताओ बताओ कौन सी बात है रमजान मियाँ?
0: जी सारी जिंदगी साथ गुजारनी है इसीलिए डरता हूँ। भाभी जी जरा जल्दी कीजिए ना।
1: ये लीजिए, बस इतनी सी देर के लिए घबरा रहे थे।
0: अरे वाह एक गिलास में, वाह वाह वाह।
2: चाय पीजिए।
0: ये तो बहुत गर्म चाय है,
2: मजा आया।
0: भाभी जान एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी?
1: हाँ हाँ फरमाइए ना।
0: आप लोगों को शक्कर से परहेज तो नहीं है?
1: क्यों?
0: इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
1: कहीं जा रहे हैं भाईजान सुबह सुबह?
0: अबे घी लेने।
1: बड़ी अच्छी चीज खरीदने जा रहे हैं, हम लोगों को इसका दीदार किए अरसा हो गया। क्या हलवा खाने का इरादा है?
0: हलवा? हाँ हाँ भाभी जान। हाँ
1: आपके भाईजान तो हलवा वलवा पसंद ही नहीं करते, आज तो मुर्ग मसल्लम खाने का इरादा कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ मिलता है भाईजान?
3: अब वो रही दुकान सामने भाभी जान, वो कोने पर।
1: आपके भाईजान को तो किसी ने बता दिया है वो अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा भाईजान राजीपुरा कहाँ पर है?
0: राजीपुरा भाभीजान वो तो यहाँ से 2 मील दूर है।
1: तो ये ले लीजिए अपने भाईजान की साइकिल और मेहरबानी कर दीजिए ना आज। आपके सिवा यहाँ हम लोगों का हमदर्द और कौन है? आप ही के सहारे तो हम लोग यहाँ पड़े हैं।
2: जी हाँ।
0: फिर फंस गया आज, कैसे मना कर।
2: रमजान भाई
0: चलो आज बेकार कर ही देते हैं, इसके बाद तो साफ साफ मना कर दूंगा।
2: क्या बात है रमजान भाई?
0: नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सोच रहा था कौन सी साइड से जाऊं। लाइए भाभीजान पैसे और थैला दे दीजिए। जाता हूँ मैं।
2: शुक्रिया।
0: जाता हूँ
2: शुक्रिया। कितना अच्छा आदमी है।
1: हाँ दूसरों से काम लेने का तरीका भी तो आना चाहिए।
2: अब अज्जा फरमाती हैं।

0: इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? रवा तो भूनते भूनते जल गया, अब क्या खाक बनाए?
1: अरे बेगम क्या बताऊं, मनहूसों ने पता नहीं कैसे मुझे देख लिया और दे दी बेगार। मैं तो उनसे बचने की दुआ मांगता हुआ जा रहा था कि अचानक दरवाजा खोलकर मुझे बुला ही लिया।
0: फिर बुला लिया?
1: हाँ बेगम क्या बताऊं, गिद्ध की तरह देखते ही रहते हैं मैं कब निकलूं और काम बताएं।
0: मुंह काला हो इन मुंहों का, मैं तो मिन्नत मान लेती हूँ कि जल्दी इन लोगों का मुंह यहाँ से काला हो। जब से आए हैं आराम चैन सब नदारत हो गए हैं।
1: देखो ना बेगम, कितने शौक से हलवा खाने का प्रोग्राम बनाया और ये कबाब में हड्डी बन गए। या खुदा।
2: देखो तो बेगम।
0: क्या देखूं?
2: जहमत मियां का दरवाजा खुला या बंद?
0: क्या फायदा है, देखने से अगर बंद भी होगा तो आपको देखते ही खोल देंगे दरवाजा।
1: देखो बेगम देखो, बस आज का दिन और है, उसके बाद ये भूल जाएंगे बेगार दिन। आज तो मैं दरवाजा खुलते से ही कह दूंगा कि मैं नहीं लाऊंगा।
0: आप और मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आज सुना देती हूँ उन्हें खरी खरी।
1: नहीं, नहीं।
0: क्या समझ रखा है इन लोगों ने, जब देखो तब कुछ ना कुछ बेगार देते रहते हैं, सारी खुशियों पर पानी फेर रखा है। घर से आपको भीगी बिल्ली की तरह निकलना पड़ता है।
1: नहीं, नहीं, तो... नहीं बेगम नहीं, तुम बिल्कुल मत जाना, मैं ही निपट लूंगा। आज तो उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि हुक्म बजाना भूल जाए।
0: आप तो रोज ही ऐसा कहते हैं, चलिए आज फिर देख लेते हैं आपकी हिम्मत।
1: तो चलूं बेगम, ठीक है। आलतू जलाल तू, आई बला को डाल तू, आलतू जलाल तू, आई बला को डाल तू। लाहौल विलाकत। अरे फिर देख लिया जहमत मियां ने, अब क्या होगा, अब क्या होगा।
3: अरे रमजान मियां, बहुत जल्दी में जान पड़ते हो, क्या अपना दीदार नहीं करवाओगे?
1: वो क्या बात थी कि याद, जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा।
3: अरे खैरियत तो है, कहीं भाभी जान से लड़कर तो नहीं भागे जा रहे हो?
1: अरे लड़े हमारे दुश्मन ने, मैं तो यूं ही आज जल्दी में हूँ।
3: अरे बेगम।
0: हाँ अरे हाय हाय, कहाँ चल दिए भाई जान, क्या एक कप चाय मेरे हाथ के नहीं पियेंगे?
1: भाभी जान आज मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर पी लूंगा।
3: अरे भाई अपनी भाभी को नाराज मत करो, मान लो इनकी बात और पी भी लो एक कप चाय।
1: जी नहीं जी नहीं जी नहीं भाई जान, मैं बहुत जल्दी में हूँ, माफ कीजिएगा भाभी जान, मुझे माफ तो माफ कीजिएगा।
0: अरे कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं?
1: ओफो बताने लायक नहीं है भाभी जान।
0: अरे बताइए तो, हो सकता है हम लोग कुछ काम आ सके।
1: काम? ठीक है ठीक है, बताता हूँ भाभी जान। जहमत मियां इधर कान इधर लाओ।
3: बताइए।
1: सुनो भाभी जान, आप भी नजदीक आ, जल्दी से 200 रुपए निकालो।
3: 200 रुपए क्यों?
1: अभी अभी खबर मिली है कि चाहे जितनी शकर ले लो बिल्कुल आधे दामों पर। बोलो बोलो कितनी लाऊं, कितनी लाऊं?
3: अरे वाह भाई बेगम।
0: भाईजान ये ना 200 रुपए, जितनी मिले ले आइएगा।
1: ठीक है ठीक है, हाँ लाओ, अभी लाया अभी लाया। आप लोग बिल्कुल दरवाजा खोल कर तैयार रहिएगा,
3: जल्दी आइएगा। अरे बेगम
0: क्या है?
3: वो आ रहे हैं रमजान मियां, वो आ रहे हैं। आइए आइए रमजान मियां आइए। ये उतरी उतरी सूरत।
0: हाँ?
3: भाई थैला कहाँ है?
1: थैला? अरे कौन सा थैला?
3: अरे शक्कर का
1: है? अरे शक्कर? जहमत मियां बड़ा गजब हो गया।
0: क्या हो गया?
1: यहाँ से चला तो शकर की लाइन में जेब कट गई।
3: हाँ
1: जेब।
0: क्या होगा?
1: सारे के सारे रुपए चले गए।
3: तुम्हारी जेब कट गई?
1: हाँ।
3: तुम्हारी जेब?
1: हाँ।
3: जिसमें मेरे रुपए रखे थे?
1: वही वही वही। तभी पता चला कि शकर चोरी की थी।
3: ए?
1: तो मुझे पकड़ लिया, बोले क्यों खरीद रहे हो? तो मैं तो भाईजान अपने लिए तो खरीद नहीं रहा था, आपके लिए खरीद रहा था, आपका नाम लिखा दिया।
3: क्या गजब किया तुमने।
1: लेकिन अब सुनते हैं कि खरीदने वालों को भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि चोरी की चीज बेचना और खरीदना दोनों अपराध हैं कहते हैं।
3: दोनों अपराध हैं रमजान मियां, अब क्या होगा?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, 6-7 महीने के लिए अंदर हो जाना पड़ेगा।
3: अंदर? अरे

0: हम तो बेगम आनी ये मोहल्ला छोड़ देंगे
1: और
0: कभी
1: छोड़ देंगे,
0: कभी इस मनहूस गली की तरफ मुंह नहीं करेंगे।
2: अरे कहाँ है आप, कहाँ है?
3: क्या हुआ बेगम?
2: अभी कोई इधर से ये कहते हुए आ रहा था कि जहमत में कहाँ रहते हैं, आपको पूछ रहे थे जहमत में आपको।
1: देखो आप कह देना भाईजान जहमत मियां यहाँ नहीं रहते,
0: नहीं रहते।
3: ऐसा कह दो बेगम, अब जहमत मियां को बचाना है तो कहना ही पड़ेगा।
2: तो क्या दे?
3: कह देंगे, हम बचा लेंगे, लेकिन वादा कीजिए कल से मुझे कोई काम नहीं बताएंगे।
1: पक्का वादा किया भाईजान,
0: वादा किया,
3: नहीं बताएंगे ना।
0: वादा किया।
2: चलो जी चलो, वो हलवा तैयार हो गया है।
3: अरे हलवा बना लिया, चलो चलो।
0: ठहरो ठहरो
3: जहमत मियां, भाईजान आइए हलवा खाइए।
0: नहीं,
1: हमें शक्कर से परहेज,
0: हमें शक्कर से परहेज।

बेढब पड़ोसी, अभी आपने मोहम्मद शफी की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे संतोष जोशी। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम के बारे में आपको एक सूचना दे दें। एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा अर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है, किसी शंका का समाधान चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कल बाद दोपहर 3:30 से 4 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।

0: कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है बप्पी लहरी, अनुराधा पौडवाल और बादशाह ने। गीत इंदिवर का है, संगीत तनिष्क बागची का।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत।

आइए अब सुनते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना, फरहान अख्तर, मारिया डेलमार फर्नांडिस, ऋतिक रोशन और अभय देओल की आवाज में। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आइए अब सुनते हैं तड़प फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत इशाद कामिल का है, संगीत प्रीतम का,

0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग ब्रेक के बाद।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: गणपति बप्पा
5: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
6: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
7: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
6: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
8: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं। बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो तुम गाना ही गाओ।
6: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में तनु वेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म का गाना। गीत राजशेखर का है, संगीत कृष्णा सोलो का।

अभी आपने अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था। आइए अब सुनते हैं धड़क 2 फिल्म का गाना विशाल मिश्रा की आवाज़ में। गीत रश्मि विराग का है, संगीत जावेद मोहसिन का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों

0: हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं, और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं, और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2,000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन

0: ऑप्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 करोड़ तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 करोड़ पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नए चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV/AIDS के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी

0: को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ।

भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल के इस गाने के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं चित्चोर फिल्म का गाना। यशुदास और हेमलता की आवाजों में गीत संगीत रवीन जैन का है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं मंजिल मंजिल फिल्म का गाना। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आनंद मिलिन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: FM लाइफलाइन प्रोग्राम के बारे में आपको एक सूचना दे दें। FM लाइफलाइन प्रोग्राम में कल बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर इंटरनल मेडिसिन PGI चंडीगढ़। FM लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा अर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है, किसी शंका का समाधान चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कल बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
6: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से MBA किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीं पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

0: सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा।
1: इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोंधी मिट्टी की सुगंध है प्यार, ठंडी पुरवाई है प्यार, बसंत की नवोदित कलियां है प्यार, भावनाओं की नदी है प्यार, सितार के तार से झंकृत मीठी धुन है प्यार, धूप की तपिश के बाद ठंडी छांव है प्यार, प्यार एहसास है, प्यार नीम है, गुलाब है, बेला है, चंपा चमेली है प्यार।

प्यार की शबिस्ता में सिर्फ खुशियों की कलियां ही नहीं चिटकती, दर्द का सैलाब भी उमड़ता है। प्यार के सागर में दो बूंद खारा नमक भी घुल जाता है। जब प्रतीक्षा के पल ठहर जाए, टीस भी उठती है मन में। प्यार के मौसम में आए दर्द की आंधी या बहे टीस का झरना, भला किसे परवाह।

सुंदर सी दुनिया प्रेम की, फिर अकुलाहट क्यों, फिर ये बेचैनी क्यों? बेचैन मन कहता है कुछ पहाड़ों से, नदियों और झरनों से, फूल पर मंडराती तितलियों से, हाथ में उल्टा आईना पकड़कर आसमान को उल्टा अपने सामने देखा। ये सब मुमकिन है प्यार की दुनिया में।

चार तूफान है, आंधी है, इसका नज़ारा साहिल से नहीं बल्कि पानी में उतर कर जाना जा सकता है। सागर की गहराई है प्यार, करता है प्यार कोई तो बदल जाता है उसका मन, बदल जाती है दुनिया, पूरी कायनात का नज़ारा कुछ और ही हो जाता है जब जिया जाता है प्यार के पलों को।

0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। स्मृतियों का गुलमोहर खिला है, लम्हों के पलाश छतनार हुए हैं, प्यार की रात रानी महक रही है। रेडियो से आप सुन रहे हैं छाया गीत। हम कर रहे हैं गुफ्तगू उनसे जिन्होंने भेजी है प्यार की सौगात।
1: प्यार।

उसकी खामोशी के खजाने से चुन रहे हैं कुछ शब्द। बारिश की महीन झींसी की मानिंद सुहानी लगती है उसकी अनकही बातें। वो है कोई इंसान या फरिश्ता या कोई फंतासी, कौन पड़े इस भरम जाल में, सिर्फ महसूस करते रहें उसके धरती से आसमान तक फैले विशाल प्यार को।

कहा कुछ उन्होंने, सुना कुछ दिल ने, बन गया प्यार का अफसाना। खूबसूरत लम्हों को तह कर संजो लिया है दिल की अलगनी में, आंखों के सामने सिर्फ प्यार की दुनिया है।

एक जमाने में प्यार का इजहार करना बड़ा मुश्किल होता था। चिट्ठियों के जरिए या गानों के जरिए प्यार का इजहार किया जाता था। सूचनाओं संदेशों के युग में जीने वाले लोग क्या जाने प्यार के इजहार के सही मायने क्या होते हैं। अपनी प्यार भरी बातें गानों के साथ जोड़कर करते हैं इजहार कुछ यूं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। अज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों नूं राष्ट्र निर्माण के कर्मयोगी दस्या। किसाऊ बहु मंतवी डैम प्रोजैक्ट तो पानी की वंड संबंधी अज 6 राजां विचकार इतिहासक समझौता दस्तखत किया गया। डैम चों हरियाणा नूं 836 क्यूसिक पानी मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा खेत्र विच स्वै निर्भरता नूं यकीनी बनाने लई महत्वपूर्ण कदम चुक रही है। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी खेत्र विच ऑटोमेटिड नंबर प्लेट की पछाण करन वाले ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। पहले पड़ाव विच गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत अते झज्जर विच 775 कैमरे लगाए जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय जनतक सेवा प्रसारक दूरदर्शन अज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। जनतक सेवा प्रसारक 1959 विच आकाशवाणी अधीन एक प्रयोगात्मक टैलीविजन सेवा वजों शुरू किया गया सी। अज हरियाणा के वख-वख स्थानां ते राज दे मंत्रियां अते संसद मैंबरां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सालां दी सेवा नूं समर्पित सेवा संकल्प अभियान अधीन चलाए जा रहे प्रोग्रामां बारे जानकारी दित्ती। 9वें राष्ट्रीय पोषण महीने दे हिस्से वजों अज चंडीगढ़ विच अनीमिया दी रोकथाम, मावां अते बच्चियां दी सेहत, पौष्टिक खुराक अते भाईचारक भागीदारी ते केंद्रित गतिविधियां दा आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अज कल अते परसों पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच किते किते तेज़ हवावां ते गरज नाल भारी मीह पैण दी भविखबाणी कीती है। मुख प्रदेशक खबरां खत्म होईआं। दिलो हुण सुनो पंजाबी गीतां दा सजा प्रोग्राम सुर सांझ। शुरुआत करते हैं कौर बी दे गाए इस गीते नाल।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਨੂੰ।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: ਜੀਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਗਾਇਜ਼ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तरफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
3: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत

0: मलूक दास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।